0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: लैला लैला लैला लैला लैला लैला ला जाल तेरा लैला

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार के साथ उपस्थित है स्टूडियो में सुमेरा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा मन नमस्कार और आदाब। फुटबॉल की इस बड़ी खबर से शुरू करते हैं। कल रात खेले गए चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट-जर्मेन की जबरदस्त जीत हुई। आर्सेनल के साथ मैच ड्रॉ गया 1-1 पॉइंट से, लेकिन पेनाल्टी शूट आउट के दौरान पीएसजी ने बाजी अपने नाम करके चैंपियन का खिताब जीत लिया है। आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हर बच्चे को ये सीख देता है कि ना सिर्फ एक ही रोज माँ का सम्मान करना चाहिए या माँ को खुश करना चाहिए, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि माँ को रोजाना पलकों पर बिठाकर उसकी कुर्बानियों और कामरानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माँ वो होती हैं जिसका दिल बेहिस, इंतहाई मोहब्बत का वो खजाना है जिसकी ममता की रईसी हर पल बढ़ जाती है। सभी माओं को इस दिवस की शुभकामनाएं। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय बच्चे को लेने वाले परिवारों को गोद लेने वाले परिवारों के लिए नए कानूनी ढांचों पर गौर कर रहा है। कैसे प्लेटफॉर्म को कायम किया जा रहा है ताकि परिवार अपने तजुर्बे बांट सकें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओयाना वोमारी ने कल फिनिक्स में इस पर बात की। सऊदी अरब की पाक जगहों में कई हफ्ते गुजारने के बाद हमारे करीब 1500 मर्शन हाजियों की हज मुकम्मल हो गई है। मैदान अराफात में एक दिन बिताने के बाद उन्होंने तमाम मरहले पूरे किए और अब अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस इतवार से कुछ मर्शन हाजी वापस मुर्शस आ रहे हैं। अगले 24 जून तक सऊदी एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुल 12 उड़ानों में हमारे हमवतन मुर्शस लौटेंगे। उनके खैर मकदम के लिए प्लेजेंस हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। विदेश में सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया जिससे पता चले कि किन मरीजों को इलाज से फ़ायदा होगा और किन के लिए इलाज बेअसर रहेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2/3 से ज़्यादा मरीज कीमोथेरेपी के प्रभावों से बच सकते हैं और उनका इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही किया जा सकता है। याद रहे कीमोथेरेपी से बहुत असरात हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4000 से ज़्यादा मरीजों के साथ ये अध्ययन किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।

रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मा काना मा यकून का बयान उन्हें सिखाया, सूरज और चांद हिसाब से हैं और सब्जी और पेड़ सजदा करते हैं, और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइत्तेदाली न करो और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन न घटाओ, और जमीन रखी मखलूक के लिए इसमें मेवे और गलाफ वाली खजूरें और भूस के साथ अनाज और खुशबू के फूल, तो ऐ जिनो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।

उसने आदमी को बनाया बचती मिट्टी से जैसे ठीकरी और जिनको पैदा फरमाया आग के लौके से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे, दोनों पूरब का रब और दोनों पश्चिम का रब, तो तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उसने दो समंदर बहाए के देखने में मालूम हो मिले हुए और है उनमें रोक के एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें से मोती और मोंगा निकलता है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। और उसी की है वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई है जैसे पहाड़, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। कुल

ऐ जिनो इंसान की ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के करारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहां निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग की लपट और बेलपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे सुर्ख निरी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

तो उस दिन गुनहगार के गुनाह की पूछ न होगी किसी आदमी और जिन से, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। यह है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते हैं, फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खौलते पानी में, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बहुत सी दानों वालियां, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बहते हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनमें हर मेवा दो दो किस्म का, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका अस्तर कनादीस का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शौहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, उनसे पहले उन्हें न छुआ किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। गोया वो लाल और मूंगा हैं तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे।

नेकी का बदला क्या है मगर नेकी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। नहायत सब्जी से स्याही की झलक दे रही हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें दो चश्मे हैं छलकते हुए, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे। उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुठलाओगे।

0: उनमें औरतें हैं आदत की नेक, सूरत की अच्छी, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। हूरें हैं खेमों में पर्दा नशीन, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। उनसे पहले उन्हें हाथ न लगाया किसी आदमी और न जिन ने, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। तकिया लगाए हुए सब बिछौनों और मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन सी नेमत झुटलाओगे। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, जो अजमत और बुजुर्गी वाला।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयात मुबारक की तिलावत समाअत की। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं।

दी गई है। हज के बाद हाजी को चाहिए कि वो अपने आमाल की हिफाजत करे, नमाज, तिलावत और जिक्र इलाही का एहतमाम करे और गुनाहों से बचे।

और उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। आइए सबाल खैर प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ हम इजाज़त तलब करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा, अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।

थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन मन नाट कार्यक्रम शुभांतम वरकू अंत चेरे समय दगर गाने व

रात ने दिवस रड़ो तोय मारू खाली ने खाली पेट, राते आवे नींदर रूड़ी मारी कने एकली मूड़ी, राते आवे नींदर रूड़ी

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनकी आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

को नितुषा का करजो प्रणाम। इस समय आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं और ये है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। आइए श्री गणेश करते हैं और एक बार फिर, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो श्री विष्णु की महिमाओं के बारे में और जानेंगे।

भगवान श्री विष्णु को सनातन धर्म में सृष्टि के पालनहार के रूप में माना जाता है। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप अपनी सीमा पार करता है और मानवता संकट में पड़ती है, तब प्रभु विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनका दया भाव असीम है और उनका नाम ही भक्तों के जीवन में शांति और सुख का प्रतीक बन जाता है।

श्री विष्णु के चरणों में जो प्रेम और श्रद्धा से झुकता है उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। विष्णु जी का कोमल और दिव्य स्वरूप हर भक्त के मन को शांति देता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सिर्फ अस्त्र नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश होते हैं।

लोग क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान होते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं। ये दृश्य श्रोताओं केवल एक दिव्य रूप ही नहीं बल्कि संसार को यह संदेश देता है कि जहाँ विष्णु का वास होता है वहाँ समृद्धि, शांति, प्रेम स्वयं आ जाते हैं। उनके भक्त सदैव यह मानते हैं कि नारायण के बिना जीना जीवन अधूरा है।

विष्णु ने अनेक अवतार लेकर धरती को पाप से मुक्ति दिलाई। कभी राम बनकर मर्यादा और सत्य का पाठ पढ़ाया, तो कभी कृष्ण बनकर प्रेम, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाया। हर अवतार में एक ही संदेश छुपा था, सत्य की हमेशा विजय होती है और धर्म का रक्षण स्वयं भगवान करते हैं। भक्त जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तब उसके मन की चंचलता शांत होने लगती है। विष्णु नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो दुखी हृदय को सहारा देती है और निराश जीवन में नई रोशनी भर देती है। वैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नारायण का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र और सुखमय बनने लगता है।

विष्णु की भक्ति हमें दया, प्रेम, क्षमा और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर मन में भगवान के प्रति विश्वास हो तो हर अंधेरा दूर हो सकता है। विष्णु जी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब नारायण अपनी कृपा से भक्त के जीवन को संभाल लेते हैं। उनकी महिमाएं शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं की जा सकती हैं। वे अनंत हैं, अविनाशी हैं और हर कण कण में विराजमान भी हैं। उनका नाम ही भक्ति का सार है, उनका स्मरण ही मन की शांति है और उनके चरणों में ही सच्चा सुख छुपा हुआ है। जो व्यक्ति नारायण की भक्ति में लीन हो जाता है ना, उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश कभी कम नहीं होता। हरि नाम का जप करते हुए जीवन का हर पल पवित्र बन ही जाता है। हरि ओम नारायण, नारायण हरि।

一首《鲁冰花》唱不尽心底的眷恋，母爱如灯火，始终为我们点亮前路。接下来一起来听《烛光里的妈妈》。

烛光摇曳，温情满满，世间之大莫过于母爱，母亲的爱。接下来请聆听毛阿敏带来的天之大。

爱无言，温暖绵长，母女之间的牵挂与心声都藏在这首歌里，是妈妈，是女儿送给大家。

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा से। सुमायरा, आपको सलाम, नमस्ते।
1: नमस्कार रौदाब। उसकी दुआओं में जन्नत की हवा है, माँ को सलाम जिसके आगोश में हर बच्चा महफूज है और एक अलग सुकून महसूस करता है। माँ की कदर करना, माँ का आदर करना, हर लिहाज से उसका मेहरबान रहना हर बच्चे की जिम्मेदारी और फ़र्ज है। मुर्शस में मई महीने के इस आखिरी रविवार को मातृ दिवस के मौके पर हर माँ को शुभकामनाएं, जिसकी मौजूदगी से एक इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत है। आज का दिन याद दिलाता है कि माँ की ममता को हर रोज़ मनाना चाहिए, न सिर्फ आज के दिन, उसके दिल को खुश करना चाहिए जिस तरह वो हम पर अपना प्यार नछावर करने में वक्त नहीं देखती, उसी तरह हमें उस हमारी मोहब्बत के लिए उसे आज की ही तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सभी माओं को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मातृ दिवस के मौके पर दुकानों में काफ़ी चहल पहल है, फूल वालों के पास भी फुर्सत नहीं है। माओं का शुक्रिया अदा करने के लिए गुलदस्ते खरीदे

0: करवा रहे हैं। आज परंपरा अनुसार परिवारों में लंच या फिर डिनर का इनेकाद किया जा रहा है। फुटबॉल की बात करें, कल रात खेले गए चैंपियंस लीग में पारी सैन जर्मेन की ज़बरदस्त जीत हुई। आर्सेनल के साथ मैच ड्रॉ गया एक एक पॉइंट से, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट के दौरान पीएसजी ने बाजी अपने नाम करके चैंपियन का खिताब जीत लिया। गैब्रियल के स्पॉट किक ने मैदान में कमाल दिखाया। पारी सैन जर्मेन लगातार दूसरे साल के लिए चैंपियंस लीग का कप घर ले गया। और इस मैच के बाद फ्रांस में फुटबॉल परस्तारों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों अफसरों को तैनात किया जाना पड़ा ताकि राजधानी पेरिस में यातायात में कोई रुकावट ना हो। मुठभेड़ों की वजह से कई पुलिस अफसर जख्मी हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ना पड़ा। पिछले साल भी फ्रांस में हिंसात्मक घटनाएं पेश आई थीं जो जानलेवा थीं। सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया जिससे पता चले कि किन मरीजों को इलाज से फ़ायदा होगा और किन के लिए इलाज बेअसर रहेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2/3 से ज़्यादा मरीज कीमोथेरेपी के प्रभावों से बच सकते हैं और उनका इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही किया जा सकता है। याद रहे कीमोथेरेपी से थकान, उल्टियां, झड़ते हुए बाल, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, फर्टिलिटी मसले पैदा हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4,000 से ज़्यादा मरीजों के साथ ये अध्ययन किया जिन्हें हाल में ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा की है। ये मरीज यूके, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड से हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। बालगोबिन रोड मालेंगा सैंपिया में 89 साल के 89 years old श्री पूरन नक्चेदी, श्री पूरन नक्चेदी जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और अलेब्रियों रोड वाकवा के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है कल 10:30 बजे कल सुबह 10:30 बजे के बेटे विशाल नक्चेदी के घर बालगोबिन रोड मालेंगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों कास्टेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हम हमदर्दी हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: ninety-four, 95.6, 98.2 megahertz. You're listening RM3 Radio. Radio.
4: Ma.
5: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
4: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
6: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
5: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
4: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
5: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण आप सभी को। सो बस आज है संडे और 31 मई 2026 और मैं हूँ देवीना आपके संग। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम MBC RM3 रेडियो मनोरंजन पर। वैसे आज का यह सफ़र कुछ अलग है, कुछ भावुक है, कुछ बेहद खास है, क्योंकि तो आप जानते ही हैं हम मना रहे हैं मॉरिशस में मातृ दिवस, मदर्स डे, उस अनमोल रिश्ते का उत्सव जो प्रेम, त्याग, ममता और समर्पण की सबसे सुंदर मिसाल है।

वैसे कल ही हमने कहा था कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। बस माँ वह शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। उनकी दुआओं में बरकत है, उनकी ममता में जन्नत है और उसकी मुस्कान में हमारी सारी खुशियाँ बसती हैं। सो आज के इस विशेष अंक में हम माँ को समर्पित गीत, यादें, संदेश और दिल की बातें लेकर आपके साथ अगले 3 घंटों तक रहेंगे।

घर केवल मकान होता है, माँ से ही घर में जीवन आता है। तो बस सभी माओं को, स्वीट स्वीट मम्मीज को हम कहेंगे, वो नानी हो, दादी हो, मम्मी हो, भाभी हो, कोई भी हो, दीदी हो, बस आप सभी मम्मीज को हमारी पूरी टीम की ओर से, एमबीसी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस संदेश जो हैं तो आने शुरू हो चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग व्यस्त होते हुए भी, क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोग अभी लंच ले रहे होंगे, परिवार के साथ बैठे होंगे, फिर भी अगर आपका रेडियो ऑन है तो थैंक यू सो मच। सुबह से आप जुड़ जाए एमबीसी रेडियो मनोरंजन के साथ, मैं हूँ देविना, और यहाँ पर होंगे बहुत खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत से गाने, और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे गाने हैं माँ पर। मगर जैसे हम कहते हैं हमेशा ना, कि जो मातृ दिवस है बस माँओं के लिए नहीं है, सभी परिवार के लिए है। सो परिवार दिवस आपके लिए, फैमिली डे, फैमिली टाइम हो जाए आप सबों के लिए। सो बस ये गाना जो है आप सबों के लिए।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जैसी जो की घड़ी में 12:30 हुए हैं यहाँ पर सुहाना सफर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे कहते हैं जब हम चलना नहीं जानते थे माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जब हम बोल नहीं सकते थे माँ हमारी खामोशी भी समझ जाती थी, और आज भी जब हम परेशान होते हैं सबसे पहले हमें माँ की याद आती है। तो आइए इस प्यार और अपनापन भरे एहसास के साथ हम इस स्पेशल डे को मनाएंगे अपनों के साथ, अपनी माँओं के साथ, फैमिली के साथ, पापा के साथ। अगर हम जानते हैं कितनों के माएँ नहीं हैं, कितनों के बच्चे नहीं हैं, फिर भी जो हैं आसपास उनको ही अपना बनाकर आप उनके साथ प्यार बांटना, बस आप देखेंगे आप कितने खुश होंगे, क्योंकि जो एहसास होता है ना वो सिर्फ खून से नहीं रिश्ता दिलों से भी निभाया जाता है। सो बस अगले जो फरमाइश, जो पहली फरमाइश आई है उनकी ओर बढ़ते हैं। अनीता जी हमेशा की तरह जुड़ जाती हैं पहले से ही फिकॉन फ्लैग से। अनीता जी हेलो जी सभी परिवार को। सो बेटियों के साथ हैं, बहुओं के साथ हैं, पोते पोती और स्पेशली पति के साथ भी हैं। सो वे आर हैविंग लंच, सो बन आप पेची शुभहार आपको अनीता जी और द होल फैमिली। तो सभी माताओं के हैप्पी मदर्स डे विश कर रही हैं और सभी फैमिली को कह रही हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फैमिली डे। सो बस ऐसे ही लंच लेकर प्यार बांटिए और हमें भी इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच अनीता जी। वैसे हम नहीं हैं मगर फिजिकली, मगर हमारी आवाज़ आप तक आ ही चुकी है। सो बस ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि हम वहीं पर हैं। सो आप एंजॉय कीजिए अपना लंच और एंजॉय कीजिए ये जो गाना है, पारिवारिक गाना है। तो जैसे कहते हैं ना, सच में भगवान पता नहीं हमें दिखाई दे या नहीं, मगर अगर हम अपने माता पिता को ही भगवान बनाने तो बस हम कितने खुश होंगे ये हमें ही पता है। तो ये जो सच है कि भगवान है हरिहरन और साथ में है घनश्याम बसवानी, प्रतिमा राव और है संतोष तिवारी, हम साथ साथ हैं।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: माँ
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

और हमें अच्छा लगता है जब हम आते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिविटीज़ होता है. सो आप लोग इतने बिजी होते हुए भी परिवार के साथ है, फैमिली के साथ है, फिर भी हमें मैसेज भेजते हैं, हमसे बातें करते हैं. सो सो नाइस ऑफ यू. सो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. प्यार ही प्यार बेशुमार आप सबों को. तो वापस स्वागत करते हैं आपका सुहाना सफर प्रोग्राम में. दोस्तों, मौसम बदलता है, समय बदलता है, तकनीक बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता. आप मानेंगे ना, माँ चाहे कितनी भी बिजी हो, उसे अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात याद रहती है. और माँ के लिए एक सुंदर पंक्ति हो जाए, माँ की दुआ वक्त को कम, माँ की दुआ वक्त को क्या, तकदीर भी बदल सकती है. और आज यदि आपकी माँ आपके साथ हैं तो उन्हें गले लगाइए, बिग हग्स टू हर, उनका आशीर्वाद दीजिए. और यदि वे इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे कितने लोग हैं आज, बहुत लोग हैं जो रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी माँ याद आ रही है, या पापा या कोई सदस्य है फैमिली का जो आज नहीं है उनको उनके पास, तो उनको याद करके रोते हैं. मगर हम ये कहेंगे कि ये यही तो जीवन है, दिस इज़ लाइफ माय डियर. सो मेरे दोस्त, अगर आप आंसू बहाएंगे तो आपको जो है हिम्मत कौन देगा. तो आप अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, और जितने लोग आज आपके साथ नहीं हैं उनको याद करके ना, उनको प्यार से याद कीजिए, आंसुओं से नहीं. तो अगर माँ नहीं है आज ना, तो उनकी यादों को अपने दिल में संजो कर रखिए, क्योंकि माँ कभी दूर नहीं जाती, वह हमेशा हमारे दिलों में रहती है. तो आपने सुना ना, यहाँ पर हमने कहा कितने लोग हैं, जैसे नवीन भाई हैं, कितने दिनों बाद नवीन भाई ने हमें फ़ोन किया. सो नाइस अभी नवीन भाई, और आपको आपकी माँ की बहुत याद आ रही है, आँखों से आंसू निकल रहे हैं, मगर नो वरीज, अगर आपके आसपास कोई भी है जो आप को अपना समझता है, तो बस आप बहुत लकी हैं. और हम भी हैं यहाँ पर ना, हमेशा आपका साथ देने के लिए. सो जिनकी माँ नहीं है, जिनके पापा नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसे बहुत हैं लोग, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे होते हुए भी वे अकेले हैं. तो बस सभी न कभी देन इन ए वे कोई भी इतना खुश नहीं है, मगर जो भी है आपके पास उसमें खुशी ढूंढिए, बस आप खुश हो जाएंगे. सो ये जो गाना है दो दिशाएं, ये जो जाएगा नवीन जी आपके लिए, इसके बाद होगा माला जी आपके लिए भी, आपके पूरे परिवार के लिए माला जी. और आप जो हैं कह रही हैं पूजा पाठ हो रही हैं आज, और आपके जो दामाद आएंगे, बेटियां हैं, सो बस उनका साथ आप एंजॉय कीजिए. सो कनील, कबीर, कनीश, केविन, किरण, सत्यम और शिव हैं साथ में, नाती नातिन और जो बहुएं हैं उन सभी के लिए माला जी की ओर से रिवेज रॉम्पो की है ये गाना आप सबों के लिए.

ये प्यारा सा गाना जो था पाई की नंदा जी के लिए था। नंदा जी हैप्पी मदर्स डे सभी को कह रही है, और जो नई नई पत्तू मिली है ना वो तैयारी कर रही है, वहाँ पर पराठा पका रहे हैं, साथ में है करीज, और ये गाना उनको पसंद था, उनको सुनना था। सो सभी वो चार बच्चे हैं, बहू नाती पुनीता फैमिली और गणेश फैमिली के लिए ये था आपके लिए नंदा जी। और अगला गाना जो है बार बार लोग सुनना पसंद करते हैं, लाडला मूवी का गाना, और इसमें नज़र आए थे अनिल कपूर साहब, साथ में थी फरीदा जलाल, और ये जो गाना है माँ की ममता से भरी हुई है बेटा का प्यार। सो तेरी उंगली पकड़ के चला, और हम हमेशा माँ की उंगली पकड़ के ही चलना सीखते हैं, और जब वो बुरी हो जाती है ना, जब वे चल नहीं पाती, तब हमें उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं है। जितने लोग आश्रम में हैं, किसी वजह से वहाँ पर हैं, फैमिली से दूर, आप सभी को हम याद करते हैं, आप सभी को भेजते हैं ढेर सारा प्यार, और हमें आपका ढेर सारा आशीर्वाद मिले, बस यही है दुआ हमारी। और ये जो गाना है लाल माची की शोभा जी सभी के लिए मांग रही हैं, बेस्ट विशेस टू ऑल मदर्स इन मॉरिशस एंड अब्रॉड, और सभी जो बेटियां हैं, भाभियां हैं, और सभी जो माँ बनी हैं, नई नई माँ बनी हैं, जो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको भी, जिनके बच्चे अब्रॉड हैं, दूर हैं, उनसे सभी के लिए हैप्पी मदर्स डे।

ये जो गाना भी चला इसमें नाम जोड़ेंगे बाबू अनातवा जी का, उनका जो फैमिली टाइम है वो शाम को बच्चे मिलेंगे, अभी के लिए फिलहाल शॉप में है और हमें सुन रहे हैं। बाबू जी आपके परिवार को, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फैमिली डे। साथ में नाम जोड़ना चाहेंगे ललिता कुशल जी ऑफ ट्रियोले, वो मना रही हैं शाम को भी, सभी के लिए बच्चे जो हैं बाहर गए हैं, सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, उनके बच्चों की ओर से, उनके बच्चों के लिए भी। और एक बजे के समाचार के बाद हम फिर मिलने वाले हैं, बस आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए हमें गर्माहट देती माँ, कष्टों से हमें बचाती हुई, हंसती हुई हमें बदल बहलाती हुई एक माँ। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते नहीं थकते। माँ वह अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा और संस्कार देती हैं। दिन की शुरुआत उनसे होती है, दिन का अंत भी। उनकी ममता, उनका त्याग, समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। डांट कर या प्यार करके माँ हमें समझाती हैं, जीना सिखाती हैं। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माताओं को सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को संवारा है। सभी माओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फुटबॉल की दुनिया में कल पेरिस सैं जर्मेन ने लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग जीता। टीम का मुकाबला कल बुडापेस्ट में आर्सेनल के साथ हुआ, जहां मैच के अंत तक स्कोर समान रहा और आखिर में पेनल्टी शूटआउट में पेरिस सैं जर्मेन ने 4-3 के स्कोर के साथ जीत हासिल की। विदेश की खबरों में कोंगो गणराज्य में इबोला महामारी को लेकर आपात स्थिति की घोषणा की गई है। 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। वहां अभी के लिए सक्रिय मामलों की

0: संख्या 1000 पार दर्ज हुई है, जबकि कम से कम 246 लोगों की मौत हो चुकी है। युगांडा में भी 9 सक्रिय मामले और 1 मौत की पुष्टि की गई है, जहां इस महामारी के तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: Ma.
7: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
6: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
8: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
7: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
6: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
7: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज खिन्न दुखियारी क्यों है माँ, आज यूं हारी हारी क्यों है माँ, तेरे आंसुओं के खारेपन में ये कड़वाहट कैसे आई। शायद हम ही हैं जिसने तेरी ऐसी हालत बनाई।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर। जो वेलकम बैक, 1:10 हुए हैं और यहाँ पर हैं आप जुड़े हुए MBC RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ और दीविना है आपके संग 3 बजे तक। सो फिर से वंस अगेन आपको कहेंगे मातृ दिवस अभिनंदन, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। और दोस्तों, मातृ दिवस केवल एक दिन नहीं होता बल्कि माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है ये एक दिन। मगर अगर आप माँ से प्यार करते हो ना, तो हर दिन आप उनको खुश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी कोशिशों के साथ आप माँ को खुश कर सकते हैं। माँ वह दीपक है जो स्वयं जलकर हमारे जीवन को रोशन करती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, उसके प्यार में छिपा है जीवन का हर बोल। जब भी ठोकर लगे राहों में कहीं, माँ की दुआ बन जाती है मंजिल की डोर वही। बस फिर से वंस अगेन आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज परिवार दिवस और मातृ दिवस दोनों का सुंदर संदेश हमें यही सिखाता है कि रिश्तों को समय दीजिए। मोबाइल की दुनिया में कभी कभी कुछ पल निकाल कर माँ के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें करें। बस अगर रोज़ आप कहेंगे माँ आप कैसी हैं, आपने खाना खाया, आपको कुछ चाहिए, बस यही सुनकर माँ खुश हो जाती हैं। तो छोटी सी कोशिश कीजिए ना, आप देखेंगे कि आपकी माँ कितनी खुश होती हैं। माँ को महंगे उपहार नहीं चाहिए, आपके समय और प्यार की ज़रूरत होती है ना। सो बस इसी ऐसे ही कुछ संदेश लेकर हम आए हुए हैं आज। और अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, और यह होगी किसकी और अनिता जी, अनिता लाल जी जी मदार दिया की हैं और बेस्ट विशेष भेज रही हैं सभी माओं को। सो अपनों का साथ हैं तो बस क्या चाहिए। और सभी परिवार के लिए इटू गोगा लाल जी परिवार के लिए ये गाना मांग रही हैं। और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और माँ की याद आ रही है, तो ये गाना

1:21 मिनट हुए हैं, आज है रविवार 31 मई, 31st of May हम मनाते हैं मॉरिशस में मदर्स डे। तो बस बच्चों से यही कहना है, रानी बना के रखना, रानी बना के रखना उस माँ को जिसने तुम्हें राजकुमार या राजकुमारी की तरह पाला हो। कुछ उनके पास नहीं था फिर भी सब कुछ दिया तुम्हें, और आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो माँ को क्यों कुछ नहीं दे सकते? अगर कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट प्यार तो दे सकते हो, टाइम तो दे सकते हो, रिस्पेक्ट तो दे सकते हो। बस सभी माओं को हमारा सलाम है, सभी माओं को भेजते हैं ढेर सारा प्यार, और बच्चे लोग अपनी माँ को बस आज ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा उनका साथ दीजिएगा, उनको दुलार दीजिएगा, उनको प्यार दीजिएगा। तो बस अगला गाना जो है हम सब की मनपसंद है, और ये गाना जाएगा रामलोल, अमृता रामलोल जी का, वो हैं जी हाँ। तो उन्होंने कहा मानी है सवेरे उन्होंने फूल चढ़ाया माँ को, और जितने मॉरिशस वासी हैं सभी माएँ हैं उनको कहती हैं हैप्पी मदर्स डे, और उनकी बहनें हैं कमला और सरिता, साथ में रंगीलाल परिवार और क्लावेट, और एक्चुअली अमृता जी कानवत से हैं। सो बस अमृता जी ये गाना आपके लिए, साथ में रोजबेल की ओर चलते हैं, वहाँ पर है जोयकन फैमिली, मीना जी हैं और रोजबेल, मीना जोयकन जी नमस्ते जी। सो सभी परिवार को भेज रही हैं प्यार और माटी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मीना जी, और बेटी हैं रीता, दामाद हैं विकास, बेटा रोशन, बहू पूनम, नातिन है, साथ में क्यूपिप की, और ऑल्सो हम भूल गए सुरीनाम से है उमिता, साथ में है क्यूपिप की मीरा, अमित, कुशद और आहाना, और भेजते हैं ढेर सारा प्यार नलिनी जी को और देव बाबुआ को, और शुभ ग्रहियाँ की हैं साधना, मेधा, शर्मिला, शोभा जी, प्रतिमा जी, और जितने लोग हैं ना, जितनी माएँ हैं, जितनी बहनें हैं, जितनी आप लोग हमारा साथ दे रही हैं, आप सबों को ढेर सारा प्यार भेजते हैं। ये गाना आप सबों के लिए ऑन आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन, सुहाना सफ़र।

गाना डेडिकेट करते हैं माया जी को, मोंटेल ब्लांश की है और कह रही है ये गाने सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, माँ बाप नहीं है मगर उनको याद कर रही है। तो ढेर सारा प्यार आपको माया जी, सभी माँ को वे कह रही है हैप्पी मदर्स डे।

जहाँ ये गाना जो है विश्वानी दुबन जी की ओर से वाकवा की है, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और ये जो गाना है जाएगा बहन इंदिरा, शारदा, सहेली, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता का चतर के लिए। विश्वानी जी आपके लिए।

जहाँ और क्या जिंदगानी है, ये जाएगा ऑल्सो ब्रिटानिया की चंदनी पुरुषोत्तम के लिए. स्पेशल बेस्ट विशेज मदर सीता चौथी और विदाउट फॉरगेटिंग माई लेट पापा प्रेम एंड लेट मॉ

0: RM3 Radio।
1: माँ
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं,
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्यामा रघुनंदन जी की ओर से सभी को कह रही हैं हैप्पी मदर्स डे, माटी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहती हैं माँ रक्षक हैं, माँ प्रकृति पूरा करती हैं, शिक्षक हैं और अन्नपूर्ण हैं और सब बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती हैं। सभी माओं को सलाम है, सभी माओं को याद करती हैं। तो अब ये जो गाना हम पेश करने वाले हैं, उसका जो ओरिजिनल गाना था ना, अपने ज़माने में श्यामा जी ग्रामोफोन से मैं सुनती थी, ग्रामोफोन का ज़माना था। तो ये गाना जाएगा भैया जयप्रकाश के लिए, भाभी नम्रता, युधिश और केशव, नंदिनी ओकलू, वीना रामफोल, विश्वानी दुखिया, सभी परिवार के लिए।

0: RM3 Radio.
1: जय गाना था एक्चुअली फॉर ज्ञान बिहारी जीवन की ओर से वाइफ सबिता के लिए सिस्टर इन लॉ गीता डॉटर इन लॉ रवीना नेहा सोनकवि शयोवेश और सभी बिहारी फैमिली की ओर से सभी आरएम फ्री लिसनर्स के लिए सभी माओं के लिए हैप्पी मदर्स डे ज्ञान जी थैंक यू सो मच ऑल्सो बेल्जियम से प्रकाशवती जी की मांग पर ये गाना था आपको अच्छा लगा प्रकाशवती जी सो हैप्पी मदर्स डे टू यू

अब चलते हैं उस गाने की ओर जो बेहद पसंद है सभी को, और ये गाना है आशा जी की आवाज़ में, किशोरदा की आवाज़ में, जैसे को तैसा। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ बाप नहीं मिलते हमेशा। सो बस प्रणाम जी मनीता जी की ओर से, प्रणाम मनीता जी। तो हाँ ठीक है हम, और हाँ आई एम श्योर कि आप भी ठीक होंगी। सो माटी दिवस की शुभकामनाएं भेज रही हैं सभी को, थैंक यू। फिल्म है जैसे को तैसा, तो मेरी प्यारी माँ सुमंती सेंट जूलियन विलेज की है। दोनों बेटियों मनीता सचिता की ओर से उनके छोटे बच्चे हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं राहुल यादव केशा, नानी को बहुत सारा प्यार फ्रांस से भेज रहे हैं वो। और बहन है आरती बबीता रेखा, भाई सत्यम, भाभी उषा, अक्षय, दीक्षा हाँ जी, ऋषभ, ऋतिक, श्लेषा, और आपको और दुनिया की सभी माताओं को थैंक यू सो मच मनीता जी, और धन्यवाद आपके प्यारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमें सुनती रहती हैं, आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार, हमें भेजते हैं, थैंक यू सो मच। सो ये गाना आप सबों के लिए, तो ये होगा ये गाना आप जितने लोग मना रहे हैं मदर्स डे।

0: RM3 Radio.
1: हाँ जी, जो अगला गाना है जाएगा कुंग फू खो की आंटी जी के लिए, उनके सभी परिवार के लिए। साथ में है रोजिल के साजिद जी, कहते हैं सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे।

और मैसेज आया है ब्रह्मस्थान की उमा जी की ओर से, सिस्टर बीना, शोभा माधुरी, रेखा, ब्रदर हवि, भाभी रेशमा, ब्रदर ऋषि और गबर्धन फैमिली ऑफ घोंसाब, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना तो हो जाए, उषा जी के लिए और सभी परिवार के लिए।

मिलते हैं इस गाने के बाद 90s और ऊपर के गाने हम चलाने वाले हैं सो आपको कहेंगे ट्यून इन टू आरएम फ्री रितु मनोरंजन

0: सुनते हैं समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए, हमें सभी जोखिमों से बचाती हुई माँ आज का दिन उन्हीं को समर्पित है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते नहीं थकते। माँ वह अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा और संस्कार देती है। दिन की शुरुआत उनसे होती है, रात का अंत भी। उनकी ममता, त्याग, समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माताओं को सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को सवारा है। सभी माताओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रियल एस्टेट क्षेत्र का एक प्रमुख समूह इवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के अधीन आ गया है। इस मामले के केंद्र में कपमारीना परियोजना है जो कपमालोहर में स्थित समूह की प्रमुख परियोजना है और वर्तमान में देरी तथा गंभीर वित्तीय दबावों के कारण प्रभावित है। हालांकि इवाको इस स्थिति को केवल कर्ज के बोझ के कारण हुई गिरावट के रूप में पेश किए जाने का विरोध कर रहा है। समूह का कहना है कि वह अपर्याप्त वित्त पोषण, बैंकिंग समर्थन के समाप्त होने तथा कथित अस्थिरता पैदा करने वाली पहलुओं से कमजोर हुआ है। इन आरोपों को लेकर समूह ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। यह ऐसी खबर है जो कुछ समय से काफी सुर्खियों में है। सब्सिडी वाले दूध पाद आटा और चावल का धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले की जांच के लिए इसे फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के हवाले किया गया है। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचों को और मजबूत कर रहा है तथा ऐसे धोखेबाजों को रोकने, उनका पता लगाने और दोषियों को दंडित करने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है। प्रस्तावित दंडों में 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल कैद की सजा शामिल है। विदेशी समाचारों में कोंगो गणराज्य में बोला महामारी को लेकर आपात स्थिति

0: बरकरार हैं। दो हफ्तों के अंदर अंदर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। वहां भी के लिए सक्रिय मामलों की संख्या 1000 पार है, जबकि कम से कम 246 लोगों की मौत हो चुकी है। युगांडा में भी 9 सक्रिय मामले और 1 मौत की पुष्टि की गई है। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: Mom.
7: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
6: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
8: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
7: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
6: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
7: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

दो बजकर 11 मिनट हुए हैं और हम फ्री मनोरंजन से आप जुड़े हुए हैं। स्वागत करते हैं आपका फिर से यहाँ पर सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान। दोस्तों, जीवन की सबसे मधुर आवाज़ शायद माँ की पुकार ही होती है ना। जब माँ हमें पुकारती हैं, जैसे उनकी आवाज़ की गूंज हमेशा हमारे दिल में रहती है। और बचपन में उठ जाओ बेटा, खाना खा लो बेटा, ध्यान रखना, टेक केयर, कितने बजे आओगे, ये साधारण शब्द लगते थे उस वक्त। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि इन्हीं शब्दों में माँ का अथाह प्रेम छिपा था। उनका जैसे ख्याल रखने का तरीका ही ऐसा है कि उस समय हम नाराज़ होते थे कि माँ ऐसा क्यों कहती हैं, माँ हमें हमेशा गुस्सा दिलाती थी, हमेशा कहती थी ये करो वो करो, मगर उसमें उनका प्यार है, उनका ख्याल है। आज हम उन सभी माताओं को नमन करते हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, जो अपने बच्चों के सपनों को अपना सपना बना लेती हैं, स्टडीज़ में वो मदद करती हैं, काम में मदद करती हैं, कुछ भी करने में बच्चों की मदद करती हैं, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार की ताकत बनकर खड़ी रहती हैं। वो रोती भी हैं मगर छुप छुप

के ताकि बच्चे ना रोए। कभी कभी आज भी कुछ ऐसी माएँ हैं जो उनके पास खाना, इतना खाना नहीं है कि सबको बांटा जा सके, मगर आधा पेट खाती हैं मगर बच्चों को देती हैं। बस हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी माओं को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, और बच्चे जो है ना, बच्चे लोग माँ को खुश रखो।

दूर हैं मम्मी पापा से या मम्मी पापा दूर हैं उनसे एंड कैन नॉट मीट देयर पेरेंट ऑन दिस स्पेशल डे, तो ये गाना उन सभी के लिए फिल्म है बॉर्डर. तो सचिन जी की ओर से हैप्पी मदर्स डे टू एवरी वन, हैप्पी पेरेंट्स डे. तो ये गाना आप सबों के लिए संदेश से आते हैं, हमें तड़प आते हैं कि घर कब आओगे. बस ये गाना उन सबों के नाम जो दूर देश अब्रॉड में हैं.

जहाँ आप मना रहे होंगे अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, आप शॉपिंग मॉल में होंगे या फिर समुद्र किनारे, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आज का मौसम है वो काफ़ी अच्छा है और कुछ लोग जो है पिकनिक मनाने जा रहे हैं अपनों के साथ। तो फिर भी बी केयरफुल, क्योंकि आजकल तो सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो समुद्र का पानी है इतना अच्छा नहीं होता, कोल्ड भी होता है। तो बस अगर आप जा रहे हैं तो बीच पर आप अपनों के साथ पिकनिक मनाइएगा, बी केयरफुल। और अगर आप रोड पर हैं तो भी यू बी वेरी केयरफुल। एंड ये अगला गाना जो है हम बजाना चाहेंगे हरीश बाबू के लिए, बुबा सेन से हैं, वे कह रहे हैं सभी को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, इन ऑल ओवरऑल हैप्पी फैमिली डे, क्योंकि माता के बिना, पिता के बिना बच्चा नहीं होगा, ऑफ कोर्स कोई पापा नहीं होगा, कोई मामा नहीं होगा, तो बस मामा पापा जो हैं एक साथ होंगे तो हैप्पी फैमिली डे। तो ये जो गाना है वे कहते हैं हरीश बाबू, माता ही लक्ष्मी है, माता ही दुर्गा है, माता ही सरस्वती है, तो सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे, सभी पापाओं के लिए हैप्पी फादर्स डे। सो बस ये जो गाना है रोमांटिक गाना है, फिर भी इट सूट्स ऑल द मम्मीज टू। सो फिल्म हेरन और ये गाना अलका याग्निक साथ में सुनी निगम की आवाज़ों में, हरीश जी के खास दोस्त के लिए भी।

0: RM3 Radio.
1: Oh daddy, cool it. Break it, bang it.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: माँ,
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो बजकर 40 मिनट हुए हैं और आज की इस प्यारी दोपहर में आफ्टरनून में आप साथ देने के लिए हमेशा प्रस्तुत हमारे इस प्रोग्राम में आप हमेशा आते हैं, आप जो भी कर रहे हैं हमें सुनते हैं, बस आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद आपके संदेश के लिए, फरमाइशों के लिए, इस स्नेह के लिए। और हालांकि आप लोग बिजी हैं परिवार के साथ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग अभी आराम कर रहे हैं, सो बस आप सबों को ढेर सारा प्यार भेजते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, जहाँ खुशी है वहाँ जीवन सुंदर होता है, और इस सुंदर जीवन के लिए हम हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दें। और हमारा और आपका रिश्ता तो म्यूजिक से है, गीत संगीत से है, सो दिल का रिश्ता फिल्म है कोई आपसा, सुनी निगम की आवाज़ में सुनते हैं तेरा मेरा दिल का रिश्ता क्या है। बस इस गाने को एंजॉय करते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

जमुनाली ठाकुर की आवाज़ में प्यारा सा गाना मोह मह के धागे, और ये जाएगा प्यारी सी संध्या के लिए ओपन्टू पीमा। हेलो संध्या जी, सुहैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। वे विश कर रही हैं सभी लिसनर्स के लिए, इसे एंजॉय कीजिए।

जहाँ हर ओर पार्टी का प्रिपरेशन हो रहा है, डिनर का, कुछ लोग ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि उनके यहाँ स्पेशल मेन्यू हो रहा है, बस कुछ लोग जो हैं अभी अपने मम्मी पापा के घर जाएंगे, कुछ चले गए हैं अब घर वापस आएंगे, आगे जो फैमिली है उनकी उनकी से मिलेंगे। सो बस आप जहाँ भी हो खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, बातें कीजिए, हैव ए नाइस टाइम द होल फैमिली और अपनी

मामा पापा को ना अपने मामा पापा को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, हग्स दीजिएगा और बार बार उनको देखने के लिए जाइएगा। बस मदर्स डे का इंतज़ार मत कीजिए, जब भी समय मिले उनसे प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, एक कॉल, छोटा सा कॉल, एक छोटी सी आवाज़ बस उनको खुश कर देगा। सो बिलीव मी। और देखते देखते आज का हमारा जो कार्यक्रम है माटी दिवस स्पेशल जो है समाप्त होने को है, तो माँ जीवन की पहली गुरु है, पहली मित्र है और पहला प्यार होता है, पापा भी होते हैं। इसे यदि आज आपने अपनी माँ को धन्यवाद नहीं कहा है तो कार्यक्रम समाप्त होते ही उन्हें एक प्यार भरा संदेश भेजिए या फ़ोन कर दीजिए। उनको अगर देखने का समय नहीं मिलेगा तो बस उनसे फ़ोन पर बात कीजिएगा और कहना वेरी सून वी विल मीट। उनकी खुशी शायद आपके पूरे दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया, प्रेम भरे सफ़र में साथ देने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सभी माताओं को माटी दिवस की अनंत शुभकामनाएं, पापा को भी और सभी परिवार को हैप्पी फैमिली डे। सो ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और इसी शुभकामना के साथ कि आप सब लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आने वाला जो वीक डेज हैं आपके लिए खुशगवार हो। सो सभी को बॉन कुराश। तो जाते जाते ये गाना आपके नाम करने वाले हैं और साथ में ये गाना हम प्यार भरा नमस्कार दिल से गीता जी को कहेंगे। और प्रिपरेशन हो रहा है तो वेज पुलाव है, माय फेवरेट बिरयानी भी होगी। सो वाओ, एंजॉय कीजिए। सो विशिंग ऑल द मदर्स एंड ऑल द फैमिली हैप्पी मदर्स डे। तो उनके सभी परिवार के लिए, सभी बच्चों के लिए, तो गीता जी आप एंजॉय कीजिए और ये गाना आप सबों के लिए। हमारे बाद आएंगे अजय प्रताप विद ऐसा भी होता है। बाय बाय, लव यू ऑल।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज का दिन उसे समर्पित हैं जो हमें बहलाती हैं, हमें सहारा देती हैं, सुरक्षा देती हैं, जिसे हम घर मानते हैं, जिससे हमारा घर घर बनता है। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए, हमें गर्माहट देती माँ, कष्टों से हमें बचाती हुई, हंसती हुई हमें बहलाती हुई माँ। आज का दिन उन्हीं को समर्पित। माँ वह अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ से हमें प्यार, सुरक्षा और संस्कार देती है। दिन की शुरुआत, रात का अंत उन्हीं से होता है। उनकी ममता, त्याग, समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। डांट कर या प्यार करके माँ हमें समझाती हैं, जीना सिखाती हैं। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माओं को सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को संवारा है। सभी माताओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिस फोर्स की एक ऐसी इकाई भी है जो चर्चाओं में कम ही रहती है, स्पेशल रेस्पॉन्स ग्रुप। ये इकाई मुख्य रूप से बड़े पैमाने के अभियानों में योगदान देती है, जैसे कि गिरफ्तारी अभियान और ऊंच जोखिम वाले बचाव अभियान। इसकी विशेषताओं में रस्सी के सहारे ऊंचाई से नीचे उतर कर किए गए ऑपरेशन भी शामिल हैं। SRG की एक टीम 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन तैयार रहती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय तैनात की जा सकती है। ऐसी खबर जो कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है, सब्सिडी वाले दो उत्पाद आटा और चावल का धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले की जांच के लिए इसे फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को सौंपा गया है। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचों को और मजबूत कर रहा है और ऐसे धोखेबाजों को रोकने, उसका पता लगाने और दोषियों को दंडित करने के लिए नए नियम तैयार कर रहा है। विदेशी समाचारों में, फुटबॉल की दुनिया में कल पेरिस सेंट जर्मेन ने लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग जीता। टीम का मुकाबला कल बुडापेस्ट में आर्सेनल के साथ हुआ, जहां मैच के अंत तक स्कोर समान रहा और आखिर में पेनल्टी शूटआउट में पेरिस सेंट जर्मेन ने 4-3 के स्कोर के साथ चैंपियंस लीग जीता। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। थ्रेंट रू जू मुलें दे सेनिल में फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिदत्त खुशी जो पहले लावांचर रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी।

0: दी हैं।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: ऐसा भी होता है ऑन RM3।
1: ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर रहने वाले लोग उससे भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक। किसके मन में क्या है, किसकी नियत में क्या है, कौन जान सकता है। जो मुंह के सामने हंसता है वो पीठ के पीछे छुरा भोंकता है। सुबह हम घर से निकलते हैं, शाम को पता नहीं हम घर लौटेंगे या नहीं। क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, क्या जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या जो हो रहा है उसे रोका जा सकता है, या जो हो गया है उसे रोका जा सकता था। पल भर में यहाँ क्या से क्या हो जाता है, किसी को मालूम नहीं, किसी को खबर नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वेलकम टू माई शो ऐसा भी होता है। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक, शाम के 3:05 हो रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं और RM3 रेडियो मनोरंजन पर, और आप हमें देख रहे हैं और RM3 मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर। सो बहुत सारी अद्भुत सनसनी खबरें हम लाए हैं, कुछ ऐसे हम न्यूज़ हम लाए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद अ वंडरफुल ट्रैक From the movie Girlfriend, सुनो तो जाने जाना, oh yes।

दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां पर है? इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वाडी उस सलाम सिमेट्री। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये, और ये कब्रिस्तान नजफ शहर में स्थित है। इसका नाम वाडी उस सलाम अर्थात शांति की घाटी है। इसका क्षेत्र पर लगभग 9 से 10 वर्ग किलोमीटर में भी अधिक माना जाता है। यहाँ लाखों लोगों को दफनाया गया है और कुछ अनुमान 50 लाख से अधिक कब्रों का उल्लेख करते हैं। यह स्थान शिया मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह ईमान अली के पवित्र मज़ार के निकट स्थित है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ दफन होते से उन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त होता है। विशेषताएं ये हैं कि यह कब्रिस्तान जो है लगभग 1400 वर्षों में उपयोग में है। यहाँ कब्रों में पंक्तियाँ इतनी विशाल है कि दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती है। हर वर्ष यहाँ हजारों नए शव यहाँ दफनाए जाते हैं। रोचक तत्व है इस कब्रिस्तान को लेकर कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भी इस कब्रिस्तान का विशाल विस्तार देखा जा सकता है। यह इतना बड़ा है कि इसे एक छोटे शहर के बराबर माना जाता है। सो हमेशा याद कीजिएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान का नाम है वाडी उस सलाम सिमेट्री, और यह कब्रिस्तान नजफ शहर में पाया जाता है। और कब्रिस्तान में हम जानते हैं कि मुर्दों को उकारा जाता है, वहाँ पर दफनाया जाता है, और ये तो जीवन का तथ्य है कि जो भी आता है उसे एक न एक दिन संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ धर्म के अनुसार लोगों को जलाया जाता है तो कुछ धर्मों के अनुसार लोगों को दफनाया जाता है। और इंसान जो आता है इस धरती पर कुछ ना कुछ करता है, अपनी भूमिका निभाता है और एक दिन संसार को छोड़कर चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए।

दोस्तों बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपने तो सुना होगा कि वहां पर जो भी जाता है लॉर्ड 1945 में हुई फ्लाइट 19 डिसअपीयरेंस की गुमशुदगी है और जिसमें 5 अमेरिकी सैन्य विमान लापता हो गए थे। संभावित कारण, वैज्ञानिकों के अनुसार इन घटनाओं के पीछे कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। अचानक आने वाली तूफान और खराब मौसम, शक्तिशाली समुद्री धाराएं, विशेषकर गल्फ स्ट्रीम, मानवीय त्रुटियां यानी कि नेविगेशन की गलतियां, कंपास में स्थानीय चुंबक विकलन, ऊंची लहरें और समुद्री परिस्थितियां। और अधिकांश वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में दुर्घटनाएं की संख्या दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक नहीं है। आज तक की किसी अलौकिक शक्ति, एलियन गतिविधि या अटलांटिस जैसी कथाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य किताबों, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसका कारण आज जाना मुश्किल है कि क्यों वहां पर जब कोई जहाज जाता है तो फिर से लौटकर नहीं आता। संक्षेप में बर्मुडा ट्रायंगल का एक वास्तविक स्थान है, लेकिन इसका रहस्य अब तक वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक कारणों और मानवीय गलतियों के अधिक जुड़ा माना जाता है, ना किसी अलौकिक शक्ति से। और जो भी जाता है वहाँ पर गायब हो जाता है। कोई भी लौटकर आज तक नहीं कह पाया कि मैं बर्मुडा ट्रायंगल में गया था, वहाँ क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना, कोई भी नहीं। जो भी जाता है वो वहाँ लुप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। सो दोस्तों, आप कभी मत जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ऑलराइट, सो आप वहाँ मत जाइए वरना आप भी गायब हो जाएंगे बर्मुडा ट्रायंगल में। इसके बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, आप क्लिक कीजिए द मिस्ट्रीज ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल और आप कुछ जान पाएंगे इसके बारे में।

नेहरू कौन थे जानना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे और स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1989 प्रयागराज इलाहाबाद में। उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, मामा का नाम स्वरूप रानी नेहरू। उनका निधन हुआ 27 मई 1964 नई दिल्ली में और नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ये कई बार ब्रिटिश शासन द्वारा जेल भी भेजे गए। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद वे पहले प्रधानमंत्री बने। यस, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण, विज्ञान, शिक्षा और उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया और उनके कार्यकाल में कई बड़े बाग, बांध, कारखाने और शैक्षिक स्थान स्थापित किए गए। नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था और उनका जन्मदिन 14 नवंबर भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। Yes, indeed, Jawaharlal Nehru was a great soul. और बेशक इसी नाम, इसी शख्स के नाम को मॉरिशस में एक अस्पताल का नाम दिया गया है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, विच इज़ सिचुएटेड एट रोजबेल। सो अब आप जब भी रोजबेल की हस्पताल, जवाहरलाल नेहरू हस्पताल में जाएंगे, सब याद करेंगे हाउ ग्रेट वॉज जवाहरलाल नेहरू साहब, है कि नहीं?

दोस्तों आपने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का नाम तो सुना। हाँ, ये एक अस्पताल है जहाँ पर पेशेंट लोग जाते हैं इलाज के लिए। और आखिर ये जवाहरलाल

शाम के 3:30 बज रहे हैं और बहुत से लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर. थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स इन मॉरिशस एंड इन द होल वर्ल्ड फॉर वाचिंग अस लाइव ऑन रेडियो मनोरंजन टिकटॉक पेज. और जो लोग टिकटॉक पर हमें छोड़ लोग मुझे सुन रहे रेडियो मनोरंजन पर, आपका भी स्वागत करते हैं. जी हाँ दोस्तों, जब हम खाने पीने की बात करते हैं सो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें पिज्ज़ा बहुत पसंद है. पिज्ज़ा इट्स सो यम्मी यू नो, उसमें जो चीज़ होता है वाह वाह वाह वाह क्या बात है, चीज़ चिकन ऑनियन में पानी भरा या यस. दुनिया का सबसे बड़ा पिज्ज़ा 2023 में लॉस एंजलस में बनाया गया था. यस, इसका क्षेत्रफल लगभग 13,990 वर्ग फुट, करीब 1,300 वर्ग मीटर था. इस विशाल पिज्ज़ा को पिज्ज़ा हट और उसके साझेदारों ने तैयार किया था. यह पिज्ज़ा इतना बड़ा था कि इसे बनाने के लिए विशेष आकार के कई हिस्सों को जोड़कर तैयार किया गया. इसका वजन कई टन था. कैन यू इमेजिन अ पिज्ज़ा विथ सो मच टन. यस, इसे बनाने में बड़ी मात्रा में आटा, चीज़ और टमाटर सॉस का उपयोग किया गया था. इससे पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पिज्ज़ा माना जाता है. और इतिहास में इससे पहले 2012 में रोम में बनाया गया था ओटाविया नाम का पिज्ज़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा पिज्ज़ा रह गया. लेकिन 2023 का रिकॉर्ड पिज्ज़ा जो है ये हुआ है, as I was telling you, in Los Angeles, the biggest pizza of the world in Los Angeles in 2023. काश उस समय हम भी वहाँ होते तो हमें भी एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता, हम भी कुछ पिज्ज़ा खाते. एंड पिज्ज़ा इज इट्स ओरिजिन फ्रॉम इटली, मॉरिशस का नहीं है. पिज्ज़ा कम्स फ्रॉम इटली. ओके, मॉरिशस तो मॉरिशस में हम बनाते हैं चिपूरी कारी, चिपोरी सित कारी, दाल पूरी, चना पूरी. और ये सबसे बड़ा पिज्ज़ा हुआ था लॉस एंजलस में. चलिए अब बिगड़ी का गीत हो जाए. इट्स काटा लगा. यस, सभी दोस्तों के नाम जो मुझे देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर, काटा लगा.

क्या गाना था अपने जमाने में लोग इस गीत पर नाचते थे गाते थे झूमते थे थिरकते थे कांटा लगा यस दोस्तों इस दुनिया में एक टापू है जिसका नाम है रेनियन आइलैंड वहां पर अक्सर ज्वालामुखी फटती रहती है द फेमस ज्वालामुखी इज पीतों द्वारा फूनेज जी हाँ और आपको बताते हैं कि रेनियन आइलैंड का सबसे अमीर व्यक्ति का नाम यस उसका नाम है जैक दे शातोव्यू और इस व्यक्ति को माना जाता है कि वो रेनियन आइलैंड का सबसे अमीर व्यक्ति है और उसके बाद है ओमो अपाबू जी हाँ और इसीलिए उपलब्ध हालिया जानकारी के अनुसार जैक दे शातोव्यू को इस संसार रेनियन आइलैंड में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके द्वार जाता है कुछ मांगने के लिए वो खाली हाथ नहीं लौटता है सो अगर आप एक दिन जाएंगे रेनियन आइलैंड तो जाइएगा जैक दे शातोव्यू से मिलने के लिए या ओमो अपाबू से मिलने के शायद वो आपको कोई उपहार कोई तोहफा दे दे कौन जाने और अब सुनते हैं सिंग स्किंग बहुत ही प्यारा सा गाना वाइब्स फाइव एल्बम से लिया गया

दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि डॉक्टर का काम होता है जिंदगी बचाना, और जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है उसकी जान तो डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाता है और जिंदगी भर उसे याद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो लोगों की जान ले सकते हैं? जी हाँ, एक ब्रिटिश डॉक्टर प्रैक्टिशनर था, उसका नाम था हैरोल्ड शिपमैन। वो वर्ष 2000 में उसे 15 मरीजों की हत्या का दोषी ठहराया गया। बाद की जांचों में अनुमान लगाया गया कि उसने लगभग 250 मरीजों की हत्या की हो सकती है, जिससे वह इतिहास का सबसे खूंखार चिकित्सा अपराधियों में से एक बन गया। जांच के अनुसार यह मुख्य रूप से बुजुर्ग मरीजों को घातक मात्रा में दवा देकर मार देता था और फिर मृत्यु के प्राकृतिक कारणों में कई और प्राकृतिक कारणों से हुई बताने की कोशिश करता था। उसका अंत इससे आजीवन करा वास की सजा मिली। 2004 में जेल में उनकी मृत्यु हुई। यह मामला इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि एक डॉक्टर पर लोग अपनी जान बचाने का भरोसा रखते हैं, लेकिन उसने इसी भरोसे का दुरुपयोग किया। याद कीजिएगा उस व्यक्ति का नाम, उस डॉक्टर का नाम था हैरोल्ड शिपमैन, और उसने कई लोगों की जान ले ली। क्या ऐसे भी डॉक्टर है दुनिया में? ऐसा भी होता है।

शाम के 3:53 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं ऐसा भी होता है अजय प्रताप सिंह से तालु के साथ ऑन और एम्प्री राइट मनोरंजन एंड टिकटॉक पेज एज वेल। भूत प्रेत आत्माओं और अन्य कथित अलौकिक घटनाओं पर शोध करने वाले लोगों को पैरानॉर्मल शोधकर्ता पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं ये कथित भूतिया

स्थानों की जांच करते हैं, लोगों द्वारा बताए गए अजीब अनुभवों का अध्ययन करते हैं, रहस्यमय आवाजें, रोशनी, छायाओं या अन्य घटनाओं का रिकॉर्ड रखने का प्रयास रखते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि घटनाओं के पीछे कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक कारण है या नहीं। और उपयोग के लिए जाने वाले उपकरण, कैमरे और वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, तापमान मापक, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नामक EMF, नोटबुक और साक्षात्कार रिकॉर्ड और पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें टेलीपैथी यानी कि पूर्व ज्ञान, प्रिकॉग्निशन और कथित आत्मिक अनुभवों जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हंस होसल को आधुनिक पैरानॉर्मल अनुसंधान के उद्भव माना जाता है। एडवर्ड लॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने कई प्रसिद्ध मामलों की जांच का दावा किया है। उनके अनुभवों पर कुछ लोकप्रिय फिल्में या कहानियां भी बनी हैं। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से यह ऐसा, अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि जब तक भूत प्रेत के अस्तित्व का कोई ठोस और सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है, कई कथित अलौकिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या प्राकृतिक कारणों से समझा जा सकता है। निष्कर्ष, भूत प्रेत पर शोध करने वाले लोग रहस्यमय घटनाओं की जांच करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह विषय लोगों की जिज्ञासा का केंद्र है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इसे कई दावों पर अभी भी बहस जारी की जाती है। और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी में लगे रहते, रिसर्च करते, एक दिन उनकी जान उसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में चली जाती है। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर ऑडियंस, नीले नीले अंबर पर स्वाति गैस गीत के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। शाम के 3 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन एंड फॉर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मनोरंजन। हमारे बाद 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज, के बाद डॉक्टर पूनम साहब सुनेंगे फिल्मी गजले प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज रात के 9 बजे से 11 बजे तक रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। प्रोग्राम होगा भोजपुरी तड़का। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार और आदाब। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू एट 9 PM ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन।

0: 4 बजे हैं। सुनते समाचार याचना जी के साथ नमस्कार।
1: सभी को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए हमें गर्माहट देने वाली माँ, कष्टों से हमें बचाती हुई हंसती हुई हमें बहलाती है माँ। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते नहीं थकते। माँ वह अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा और संस्कार देती हैं। दिन की शुरुआत उनसे होती है, रात का अंत भी। उनकी ममता, त्याग, समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। डांट कर, बहला फुसला कर, प्यार करके माँ हमें समझाती हैं, जीना सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। मातृदिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माताओं को सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को संवारा है। सभी माताओं को मातृदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रियल एस्टेट क्षेत्र का एक प्रमुख समूह इवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के अधीन आ गया है। इस मामले के केंद्र में कापमारीना परियोजना है जो कापमालोहोई में स्थित समूह की प्रमुख परियोजना है और वर्तमान में देरी तथा गंभीर वित्तीय दबावों के कारण प्रभावित हैं। हालांकि इवाको स्थिति को केवल कर्ज के बोझ के कारण हुई गिरावट के रूप में पेश किए जाने का विरोध कर रहा है। समूह का कहना है कि वह अपर्याप्त वित्त पोषण, बैंकिंग समर्थन के समाप्त होने तथा कथित अस्थिरता पैदा करने वाली पहलुओं से कमजोर हुआ। इन आरोपों को लेकर समूह ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फोर्स की एक ऐसी इकाई भी है जो चर्चाओं में कम रहती है, स्पेशल रेस्पॉन्स ग्रुप। ये इकाई मुख्य रूप से बड़े पैमाने के अभियानों में योगदान देती है, जैसे कि गिरफ्तारी अभियान और उच्च जोखिम वाले बचाव अभियान। इसकी विशेषज्ञता और विशेषताओं में रस्सी के सहारे ऊंचाई से नीचे उतरकर किए जाने वाले ऑपरेशन शामिल हैं। एसओजी की एक टीम 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन तैयार रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय तैनात की जा सकती हैं। विदेश में फुटबॉल की दुनिया में कल पेरिस सेंट जर्मेन ने लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग जीता। टीम का मुकाबला कल बुदापेस्ट में आर्सेनल के साथ हुआ, जहां मैच के अंत तक स्कोर समान रहा और आखिर में पेनल्टी शूटआउट में पेरिस सेंट जर्मेन ने 4-3 के स्कोर से दूसरी टीम को परास्त किया और जीत हासिल की। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: You're listening to RM3 Radio.

4:13 हो चुके हैं. नमस्ते आप, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आज की महफिल थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज बात होगी उस प्यार की जो बिना शर्त मिलता है. जी हाँ, माँ जो कभी दुआ बनकर साथ चलती है, कभी हौसला बनकर साथ खड़ी रहती है और कभी हमारी मुस्कान

खुद की खुशी ढूंढ लेती है। आज की फिल्में उन्हीं मालाओं, उन्हीं माताओं के नाम, उन्हीं माओं के नाम, उन्हीं महिलाओं के नाम जो भी जिन्होंने भी हमारा साथ दिया है किसी भी रूप में, चाहे दादी बनकर, चाहे नानी बनकर, चाहे बहन बनकर, चाहे कोई हमारी सहेली दोस्त बनकर। ये महिलाएं जो होती हैं हमेशा घर को बहुत सुंदर कर देती हैं, ये महिलाएँ होती हैं जो ज़िंदगी को बहुत सुंदर और खूबसूरत बना देती हैं। तो आज क्यों ना इस प्रोग्राम को महिलाओं के नाम किया जाए। भले हम इसमें लड़कों के यानी कि मेल्स के भी गाने चलाएंगे, बट हम जो नज़में चलाने वाले हैं उसमें स्पेशली बात जो होगी वो माओं की होगी। तो चलिए सुनते हैं फिल्मी गज़लें।

0: जीवन और पूरा संसार बसता है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 4:21 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। इस समय हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शायरा की जिनका नाम है अदा जाफरी। लिखती हैं, थक जाती है मगर रुकती नहीं, थक जाती है मगर रुकती नहीं, टूटती है मगर झुकती नहीं, घर की रोशनी वही होती है जो खुद जलकर भर कभी बुझती नहीं। सच बात है कि जितने भी हमारी माएँ हैं हमेशा थकती हैं, झुकती नहीं हैं किसी के सामने, बट कभी कभी अपने आगे झुक जाती हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको प्यार होता है अपने बच्चों से। और जब बच्चों से प्यार होता है तो वो किसी के आगे भी झुक सकती है क्योंकि उसको पता होता है ये मेरी जान है और ये जान जो होती है वही जहान होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हर माँ को बहुत प्रेम और प्यार दीजिए। माँओं से ज़्यादा बेहतर और प्यार करने वाला इंसान कोई संसार में नहीं बना।
1: RM3 Radio.

0: Puzzle.
1: 4:28 हो चुके हैं शाम के और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ। और गज़लें सभी की बहुत दिल के करीब होती है क्योंकि हमने इसके अंदर इतना सुकून महसूस किया होता है शुरू से, और उसके बाद जब वो चलती हैं तो उसके अंदर बातें जो कहते हैं जब राइटर लिखने लगता है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के आता है कि जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक हैं ऐसी शायरा जिसका नाम है किश्वार नाहिद। लिखती हैं, उसकी हथेली में बरकत थी, उसकी बातों में सुकून, हम बड़े क्या हुए समझ आया उसका जुनून। सच बात है दोस्तों कि बचपन में लगता है माँ रोकती बहुत है, डांटती बहुत है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, सड़क पे मत खाओ, घर पे खाओ, ये बातें माँ की होती है। पर बड़े होकर समझ आता है कि वो बचाती बहुत थी, ये नहीं कि वो हमें डांटती है, वो हमें सच में बचाती है।
0: RM3 Radio.

0: गजल फिल्मी गजल।
1: समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए बात करते हैं आज मदर्स डे पर, और मदर्स डे पे अगर बात करें हम महिलाओं की तो सबसे बड़ी बात होगी माओं की, बहनों की, बेटियों की। तो बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं, माएँ उससे भी ज़्यादा प्यारी होती हैं, क्योंकि उनके दिल में जो होता है ना बस वो कभी छुपाती नहीं है। पर माएँ कभी कभी थोड़ी सी बातें छुपा लेती हैं, कहती हैं कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर सच्चाई होती है कि माँ को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी माँ का प्यार मिले इस संसार में रहते रहते, तो कुछ ना कुछ ज़रूर उनके लिए लेके चाहिए। अगर आप उनके लिए वो चीज़ नहीं ले पा रहे हैं जो देना चाहते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर गले लगाइए, उन्हें एक बस कहिए, एक मैसेज कीजिए। अगर दूर हैं तो उन्हें कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और अगर आपके सामने कोई भी महिला इस समय बैठी है तो उन्हें ज़रूर हैप्पी मदर्स विश कीजिएगा। यही सबसे बड़ी बात होती है कि माँ आपके पास होती है। चलिए बात करते हैं नौशी गिलानी की, हमारी एक ऐसी शायरा जो लिखती हैं, मेरी हर जीत में उसका हिस्सा है, मेरी हर जीत में उसका हिस्सा है, मेरी हर मुस्कान में उसका नाम। मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊं, मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊं, माँ रहती है मेरा हर मुकाम। तो कही बात होती है कि चाहे इंसान कितना भी कुछ पाले, भंडार लगा ले, चाहे पैसों के, चाहे कितने भी घर बना ले, चाहे कितनी भी कंपनीज और फैक्ट्रीज का मालिक हो जाए, पर सच में माँ के लिए वो इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बच्चे का बच्चा ही रहता है।
0: RM3 Radio.

0: हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारी सी शायरा हुई है, उनका नाम है ज़हरा निगाह। उनकी शायरी में बहुत ही प्यार छलकता है। लिखती हैं, घर खाली हो सकता है पर माँ की याद नहीं, घर खाली हो सकता है पर माँ की याद नहीं, वक्त बदल सकता है पर उसकी दुआ नहीं। हो सकता है बहुत सारे जो इस समय हमें सुन रहे हैं उनकी माँ इस धरती पे ना हो, पर कहते हैं कि माँ किसी भी जगह चली जाए, उसकी याद सिर्फ अपने बच्चों में रहती है। वो कहीं पर भी हो, वो हमेशा सिर्फ दुआ देती है।
1: RM3 Radio.

0: आज ये प्रोग्राम सिर्फ हम उन माओं के लिए रख रहे हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार से और सजाया है हमारी सबकी ज़िंदगी को। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी शायरा की जहाँ पे लिखती हैं बहुत ही प्यारी सी बातें। उनका नाम है इशरत अफरीन। लिखती हैं, उसकी गोद में सर रख दो तो सारे गम हल्के लगते हैं, उसकी गोद में सर रख दो तो सारे गम हल्के लगते हैं, माँ के पास बैठकर बड़े लोग भी सिर्फ बच्चे लगते हैं। तो सच कहूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर सुकून है कहीं पर है तो शायद वो माँ के पास बैठने में है। हो सकता है हमारी किसी भी माँ ने कोई ऐसी बात कही हो या की हो जिससे बच्चों का दिल टूट गया हो, तो पर फिर भी वो हमारी माँ है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर आप उनके आस पास कहीं पर भी बैठे हैं तो क्यों ना उनको आज प्यार से गले लगा लिया जाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दी जाए। हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता, हर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, हर कोई गलतियां करता है। तो छोटी छोटी सी गलतियों को दूर करके प्यार में इसमें प्यार में बढ़ जाइए, प्यार इतना बांटिए कि आपको लगे कि हाँ यही हमारी माँ है और हर औरत में आपको अपनी माँ नज़र आए।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों माँ पर बात करना बहुत ही आसान है लेकिन माँ का कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल। आज की इस महफिल से अगर आपको आपकी माँ की याद आई हो तो उनको एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी और अपने प्रोग्राम के साथ, और मेरे बाद आ रही हैं शीतल जी अपने प्रोग्राम के साथ। तो बने रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी आपके साथ पूनम, और हम मैं सभी को कहूँगी हैप्पी मदर्स डे। बस अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते हुए चेहरे से हमेशा चलिएगा। तो यही था आपका एक फिल्मी गजलों का एक प्रोग्राम। तो ये आखिरी नज्म और गजल कह लीजिए आप सबके नाम।
1: RM3 रेडियो।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: माँ,
4: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
3: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
5: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
4: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
3: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
4: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें। सभी रिश्तों से परे जीवन के जो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वो होता है माँ का रिश्ता। माँ तो माँ होती है, माँ जैसे इस दुनिया में है कोई का।

माँ का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल रिश्ता। इस खूबसूरत और पवित्र रिश्ते को सम्मान देते हुए आज यादें प्रोग्राम को हम माँ के शान में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि मातृ दिवस हम मना रहे हैं। इस खास अवसर पर गीत और संगीत के माध्यम से माँ के योगदान को, माँ के संघर्ष को एक बार फिर याद करेंगे।

एक न भूलने वाले किरदार रहे नरगिस का फिल्म मदर इंडिया। फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस एक रक्षक और प्रतिशोध लेने वाले दोनों रूपों को बड़ी खूबसूरत से दर्शाया। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए कठिनाइयों का सामना करती रही।

माँ की हर एक छवि अनोखी होती है। कभी वो रक्षक के रूप में नजर आती हैं, तो कभी अपने बच्चों को प्रेम स्नेह मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बुराइयों और संकट से अपने बच्चों की रक्षा करने के हर प्रयास करती हैं। फिल्म आई थी जय विक्रांता, पंकज उदास की आवाज में इस खूबसूरत रिश्ते को एक बार फिर दर्शाया गया। प्लेबैक दिया उन्होंने संजय दत्त के लिए।

माँ को उनके त्याग के लिए, उनके परिश्रम के लिए हम हमेशा उन्हें धन्यवाद करेंगे और उनकी अच्छाई के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। मैं इंतकाम लूंगा। धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया, गाने को लिखा आनंद बख्शी ने। मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ।

हमारी माँ वो हैं जो कि प्यार का भंडार हैं, जिनके आंचल में हर सुख सुकून प्राप्त होती है। ये खासियत, ये विशेषता हमारी माँ की है। माँ वो है जो केवल जन्म नहीं देती, बल्कि माँ वो है जो हमारी पहली गुरु, सबसे बड़ी शिक्षक है, हर दुख में सबसे मजबूत सहारा देती है, उंगली पकड़ के जिसने हमें चलना सिखाया। इस गाने को हमने लिया है फिल्म लाडला से।

हिंदी सिनेमा ने मां की विशेषता को मां के इस खूबसूरत रिश्ते को कई फिल्मों में दर्शाया फिल्म आई थी करण अर्जुन जहां राखी ने इस खूबसूरत रिश्ते को बड़ी विशेषता से प्रस्तुत किया

फिल्मों की बात चलती है और माँ की बात चलती है तो एक ऐसे कलाकार को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्हें कहा गया द मदर ऑफ बॉलीवुड। वो रही निरूपा रॉय। अनगिनत फिल्मों में उन्होंने माँ का रोल निभाया। एक डायलॉग जो आज भी हर किसी के जुबान पर है, फिल्म दीवार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन पर ये डायलॉग फिल्माया गया था, जहां अमिताभ बच्चन ने कहा, मेरे पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? जवाब शशि कपूर का, मेरे पास माँ है। ये विशेषता है, ये खासियत है हमारी माँ की।

जीवन में अक्सर माँ को कभी कभी हम भूल जाते हैं, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और हर कदम पर हमारा साथ दिया। उसी के त्याग को, उसके प्रेम को हम कई बार सामान्य रूप से समझ नहीं पाते हैं। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर माँ को उनके त्याग को एक बार फिर याद कर लेते हैं।

माँ का रिश्ता, ये एक ऐसा रिश्ता है या फिर एक ऐसा बंधन है, बहुत ही खूबसूरत प्यार का बंधन है। इसके हमें हमेशा आदर और सम्मान करनी चाहिए।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। आज है मातृ दिवस, माँ के स्नेह ममता त्याग और समर्पण को नमन करने का दिन। अवसर हमें याद दिलाता है कि माँ का प्यार जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जो चुपचाप संभालता है, हिम्मत देता है और हर मुश्किल में साथ बना रहता है। मॉरिशस के रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम इवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के तहत। कप महीना प्रोजेक्ट, देरी और गंभीर आर्थिक दबावों से प्रभावित कंपनी ने कम फाइनेंसिंग, बैंक समर्थन की कमी और अस्थिर करने की कोशिशों को संकट की वजह बताया। सब्सिडी पर रखे गए आटे और चावल के अवैध निर्यात मामले के बाद सरकार नियम सख्त कर रही है, मामला फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सुपुर्द। विदेश में दुनिया के युद्ध और संघर्ष वाले इलाकों में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए, हमें गर्माहट देती है माँ। कष्टों से हमें बचाती हुई, हंसती हुई हमें बहलाती है माँ। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते नहीं थकते। माँ वो अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा, संस्कार देती है। दिन की शुरुआत उनसे होती है, रात का अंत उनसे होता है। उनकी ममता, त्याग और समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। डांट कर, बहला पुसला कर, प्यार करके माँ हमें समझाती हैं, जीना सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माताओं को नमन करते हैं, सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को संवारा है। सभी माताओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट पूजा सुकालू की आवाज में।
1: माँ, ओ मेरी माँ,
2: तू मेरा लाडला।
3: माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। वो उसे बोलना, चलना, अच्छे बुरे का अंतर समझाना और जीवन के मूल्यों को अपनाना सिखाती है। बच्चे के सुख दुख, सफलता असफलता और हर चुनौती में माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है।
4: तू कितनी अच्छे हैं, कितनी बोरी हैं,

0: परिवार में माँ की भूमिका केवल बच्चों तक सीमित नहीं होती, वो पूरे परिवार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अपने पति के साथ मिलकर वो परिवार की नींव को मजबूत बनाती है और घर में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य का वातावरण बनाए रखती है।
1: वो सुना हो, लड़का जब बोल दे या जो का जीवन अच्छा लगता कपार दुखाता, उस दिन माँ के जनिया नींद नहीं लगी रात की। तनी सन पोता बुआ पर हाली से पूछी, कुछ खैले बेटी? बेटा तनी सन कुछ खैला, कपार दुखाता कोनो दवाई पीला, एगो माँ के दिल होकर आवाज निकला था। वो फुफमाल नहीं रही, वो जन्म दिल बाबू जाना था, हई धरती जो ना कितना कुछ संभालेलन।
0: सास और ससुर के साथ एक माँ का रिश्ता भी परिवार की एकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो उनका सम्मान करती है, उनकी देखभाल करती है और उनके अनुभवों से सीख लेकर परिवार को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार देवर और ननद के साथ भी माँ का व्यवहार परिवार में अपनापन बढ़ाने में सहायक होता है। ये केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा, त्याग और अटूट प्रेम का संबंध है।
2: चंदा ने पूजा तारों से, तारों ने पूजा हजारों है, सबसे प्यारा कौन है? मामा, मेरी मामा।
0: बच्चे बड़े हो जाए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ का स्नेह और चिंता कभी कम नहीं होती।

मातृ दिवस हमें याद दिलाता है कि माँ का योगदान अमूल्य है। ये अवसर हमें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम प्रदान करता है।

0: अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस के रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम एवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के तहत आ गया है। मामले के केंद्र में है कपमा लेहोइका, उसका प्रमुख प्रोजेक्ट कपमा हिना, जो देरी और गंभीर आर्थिक दबावों से प्रभावित हैं। हालांकि एवाको इससे केवल कर्ज से जुड़ी गिरावट मानने से इनकार कर रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: एवाको ग्रुप वर्तमान में रिसीवरशिप के अधीन है। ये कार्रवाई सिल्वर बैंक, जो खुद वर्तमान में प्रशासन के अधीन है और SBM के अनुरोध पर की गई है। इस पूरे मामले के केंद्र में ग्रुप की प्रमुख परियोजना कप मारीना है, जो वर्तमान में देरी, वित्तीय संकट और प्रोमोटर उसके बैंकों तथा निवेशकों के बीच आपसी विश्वास की कमी से बुरी तरह प्रभावित है। एवाको के अनुसार शुरुआत में स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। ग्रुप का दावा है कि जून 2023 तक वो एक बड़े मुनाफे में चल रहा था, लेकिन उसी वर्ष के अंत से मुश्किलें बढ़ने लगीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शिकायत में एवाको ने स्पष्ट किया है कि उसने 1.75 बिलियन रुपए जुटाने के लिए एक बीमा समूह की संस्थाओं को नियुक्त किया था। इस राशि का एक हिस्सा 2019 में जारी किए गए बॉन्ड्स के रिफाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जबकि बाकी रकम का उपयोग कप मारीना परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए होना था। एवाको के अनुसार SBM को भी इस पुनर्वित्त प्रक्रिया में लगभग 400 मिलियन रुपए का योगदान देना था, लेकिन 2023 से बातचीत की गति धीमी हो गई। 2024 में जब ग्रुप की जरूरतें और बढ़ गई थीं, तब एवाको का दावा है कि उसे 1.5 बिलियन रुपए के बॉन्ड जारी करने की आवश्यकता थी। हालांकि SBM ने कथित तौर पर इस राशि को सीमित करके 650 मिलियन रुपए कर दिया। समूह के अनुसार ये रकम उसके कैश फ्लो को स्थिर करने और कप मारीना परियोजना को जारी रखने के लिए नाकाफी थी। एवाको का कहना है कि इसके बाद फंड बहुत किश्तों में और रुक रुक कर जारी किया गया, जबकि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि एवाको को 2024 में MIC से 100 मिलियन रुपए की राशि मिली थी। अपनी शिकायत में एवाको ने आंतरिक रूप से अस्थिर करने के एक पहलू का भी जिक्र किया है। समूह ने विशेष रूप से अपने एक पूर्व अधिकारी और कुछ तीसरे पक्षों पर गोपनीय जानकारी का उपयोग करने, प्रमुख कर्मचारियों को अपने पाले में करने का प्रयास करने और ग्रुप के प्रति लोगों के विश्वास को कम करने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में SBM ने कहा है कि उसने अपने जमाकर्ताओं और सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। जहां तक एवाको को रिसीवरशिप में डालने के फैसले का सवाल है, SBM का कहना है कि इसके लिए एक बेहद सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके दौरान विभिन्न विकल्पों पर बारीकी से विचार किया गया। अंत में SBM ने स्पष्ट किया है कि वो एवाको समूह की परियोजनाओं से जुड़े प्रॉपर्टी बायर्स की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। बैंक ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों और लागू कानूनी व नियामक बाधाओं के दायरे में रहते हुए संभावित समाधानों पर विचार कर रहा है।
0: तो आज है मातृ दिवस, वो पहली धड़कन माँ जो बच्चे के आने से पहले ही उसके जुड़ जाती हैं, वो पहला स्पर्श है जो बच्चे को प्यार और सुरक्षा देता है। माँ प्यार का सबसे सच्चा नाम, त्याग की सबसे बड़ी मिसाल, हर मुश्किल में अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत। उम्र चाहे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ला दे, लेकिन उसकी दुआओं में हमेशा सबसे पहले अपने बच्चों का नाम होता है। आज मातृ दिवस के इस खास अवसर पर हम मिलते हैं दो ऐसी माताओं से जिनकी कहानियां अलग हैं, लेकिन दिल में एक ही एहसास, अपने बच्चों के लिए प्यार, हिम्मत और पूरा समर्थन। आशिता रघु की रिपोर्ट।
2: कांचे की 99 वर्षीय दादी फुलवंती पैम

0: समय की झुरियों में छुपी हुई एक पूरी सदी की जीवंत कहानी।
1: कोई कोई चोरी नहीं करिया, नहीं रही खाई के तो गुया बटूरे खा लिया। कोई के खेत में कुछ रही चोरी नहीं करिया, कबो कने कोई आई हम गोराना देवे आखिर कुछ काजी जी कंदा है कुछ कबार के खेब ये सब नहीं नहीं रही खाई के हमके बोलिया। हम तोरा देखा उपाय कर कौन सी करम सिवा कोई के चोरी नहीं। आज ले इतना दिन हो गए बेटी, आज ले मलिया कोई नहीं बोला चोर।
0: 13 बच्चों को जन्म देने वाली दादी के आज 7 बच्चे जीवित हैं और हर बच्चे पर उन्हें उतना ही गर्व है जितना एक माँ को अपने पहले बच्चे पर होता है। उनका हाथ अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना के लिए थकती नहीं।
1: माँ वाले मुझे घर में बसा
2: हम बहुत खुशी रहा इतना दिन जिया था मैं बहुत खुशी रहा।
3: बाबा संगे रहा था इतना दिन हुआ जब ढेर को सीखली कैसे आदमी से बचावल जला कैसे आदमी से जियल जला।
1: इतने करे के चाहे ला कि कोशी है माँ माँ का है माँ जो रहा तो धरती माँ हो तब धरती फाटेला कोई नहीं जाएगा। तू प्रकार के माँ हो वही धरती मेरे माता पिता तू ही हो तू ही सखा तू ही बंधु तू ही सब कुछ होगा। माटी को ओढ़ाना माटी बिछाना माटी करना सिराना ये माटी की है हमने के शरीर जो कुछ हमने के सोना चांदी के नहीं बना ला ये माटी के बना रही हमने शरीर जो बात ये माटी की है।
0: संघर्षों के बीच भी उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ रोटी नहीं संस्कार भी दिए।
1: हमारे 12 को लड़का बेटी आज कोई हमारे द्वारे पर नहीं आ रहा बोले कि तू बेटा इसे कहीं रख हाँ बेटा बड़ा बेटा बा आज ले कोई हमारे लड़का को लोग नहीं बोले बा नेपोट किसान ला की नाशो मावा आवा मामा एंड लोग

0: कहते हैं अगर देवकी माँ ने जन्म दिया तो यशोदा माँ उससे भी बड़ी पालन करने वाली, और इसी भावना को जीवंत कर दिखाई है यूनियन पॉ की शीला सिब्ले ने। वे चार बच्चों की माँ हैं, लेकिन उनके और उनके पति का हृदय सागर से भी विशाल है। 19 वर्षीय अलीशा, जो बचपन से ही पारिवारिक स्नेह व ममता से वंचित रही, आज पिछले एक साल से शीला को माँ बुलाती है।
1: L'a retrouvé comme si il était la joie de nous la case. Oui, il était la joie de nous la case. Comme on part rouler, on dit à le suivre un coup, on fait des suivre un coup, coiffeuse. Mais quand arrive un lien, on part trouver Alicia, me téléphone, me dit écoute, toi, fille.
0: शीला के लिए अलीशा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी घर की लक्ष्मी है। अलीशा के लिए भी माँ शब्द का सही अर्थ शीला में ही मिली है। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो भी है जो थाम ले, सवार दे और बिना किसी शर्त के प्रेम करे।
2: जनता के लिए सब्सिडी पर रखे गए आटे और चावल के अवैध निर्यात के मामले के बाद सरकार अब नियमों को और सख्त कर रही है। संदेश साफ है, जनता की राहत के लिए दी गई सुविधा का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। मामला फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को जांच के लिए सौंपा गया है, जबकि व्यापार मंत्रालय नए नियम तैयार कर रहा है। माँ और शिशु की देखभाल सिर्फ दवा या सलाह का विषय नहीं, ये स्पर्श, सुकून और भरोसे की बात है। इस सोच के साथ ख्रिस्टी वाइटलिंगम पौधों के गुणों और बेबी मसाज की पारंपरिक विधि को जोड़कर परिवारों के लिए एक कोमल पहल कर रही हैं। कोरिया और नेदरलैंड्स में प्रशिक्षण लेने के बाद वे अपनी देखभाल तेल खुद

0: तैयार करती हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों को प्राकृतिक तरीके से आराम, सुकून और अपनापन मिल सके। जिला विस्तार रिपोर्ट में।
1: क्यूपिक में क्रिस्टी वाइथरिंगम का अपना एक छोटा सा बगीचा है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पौधे एवं जड़ी बूटियाँ हैं, हर एक की अपनी अहमियत। वे इन सभी का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए करती हैं।

0: साधारण तेल नहीं रहा, बल्कि इससे शिशुओं को बहुत फायदा होता है और साथ में माओं को भी शिशु को जन्म दिए जाने के बाद बहुत राहत मिलती है।
1: Avec l'expérience, je me trouvais que les mamans, même les bébés, visent un petit peu plus soin. Et faire les mamans retournent vers la nature, je trouve ça tellement important. Et on a un petit soin qui nous capable de faire nous-mêmes. Bien sûr, la vie médicale reste la vie médicale, mais un petit soin nous-mêmes qui nous capable d'apporter, qui peut faire nous wellness. Oui, après, les huiles sont personnalisé. C'est une huile très doux pour les bébés. Vous mettez lavande, camomille, tout pour amener le wellness du bébé. Pour la maman, les temps vous faites ce massage cheveux, sur la tête, ce scalp, tout cela. Moi, l'eau romarin, moi, l'eau ben, ça fait apaisante, même lavande sur les cheveux, de l'huile d'avocat. Après, elle a comme vous faites ce bain scrub. Il y a un scrub qui me prépare avec Epsom salt, Himalayan salt. Il y a une bain pierre qui me met dans les huiles, me préparer. La plupart du temps, quand une maman sortit ici, elle dit à moi, ça m'est petit bizarre.
0: वे जिन लोगों की मदद करती है उनमें है मेलिना। उन्होंने हाल ही में एक शिशु को जन्म दिया है और वे क्रिस्टी को देखने आई ताकि कमजोरी दूर हो और ऊर्जा मिले, खासकर शिशु को जन्म देने के बाद थकावट दूर कर सके।
2: Pour madame quand il finit à coucher, il est important pour lui prendre soin de ce l'écho pour premièrement pour lui retrouver lui-même, il a fait un petit pédicure, il a fait semaine soin visage, man massage, mentalement aussi l'immédiatement parce que dans la nuit vous allez lever pour guider bébé, faire les bois, tout ça. Mais à travers ça, madame, on retrouve moi-même.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte-moi.
0: अपने इस अनुभव की बदौलत क्रिस्टी मॉरिशन परिवारों को फिर से जड़ी बूटी और प्रकृति की ओर बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। उनके लिए प्रकृति और मानव स्पर्श सर्वोत्तम उपाय है।
3: विदेश की खबरों में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 पर्यटकों और एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से बचाव कार्रवाई चलाई। बताया जा रहा है कि ये लोग डलहौसी से बर्फ देखने जा रहे थे। फुटबॉल में यूरोप की सबसे बड़ी रात पर पेरिस सेंट जर्मेन ने फिर कमाल कर दिया। एक रोमांचक फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी अपने नाम उसने की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: यूरोपीय कप प्रतियोगिताओं के इतिहास में पहली बार किसी फ्रांसीसी क्लब ने लगातार दो बार चैंपियंस लीग कप अपने नाम की है। कोच लुई एनरिके को गौरवान्वित करने के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
5: De très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but.
4: हालांकि बुदापेस्ट में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन के लिए कुछ भी आसान नहीं था। खेल की शुरुआत में ही विरोधी टीम ने पहला गोल दाग दिया। मैच के 6 मिनट बाद ही आर्सेनल ने एक बेहतरीन जवाबी हमला किया और काय हावर्ट्स ने एक चौंकाने वाला गोल कर दिया।
6: Ça a été difficile. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement on est encore vainqueur de cette Champions League et on est tous heureux.
4: एक घंटे के कड़े संघर्ष के बाद उस्मान देम्बेले द्वारा पेनल्टी को गोल में बदलने की बदौलत पेरिस की टीम मैच में वापसी करने में सफल रही।
7: Huge moment in the final. Dembélé sends rather away, and the champions are on terms.
4: स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने तक भी ये स्कोर नहीं बदला। पेनल्टी शूट आउट में एवरेची एजे और गैब्रियल मगालेस, जो मैच के दौरान बेहतरीन फॉर्म में थे, अपने शॉट्स को गोल में बदलने में नाकाम रहे। पेरिस की टीम ने 4-3 से जीत दर्ज की। 2006 और 2026 अब ये दो ऐसे फाइनल मुकाबले हैं जिन्हें आर्सेनल ने गंवाया है। हालांकि टीम ने हार कर भी बेहतरीन खेल दिखाया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में क्रमशः एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस की जीत के बाद इस सीजन में यूरोपीय प्रतियोगिताओं में इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लबों

चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात उत्तर पूर्व पूर्वी इलाकों सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिर रहेंगे और हल्की बारिश होगी। कल सुबह भी हल्की बारिश के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्वोत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह सूर्योदय 6:38 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: जाते जाते मातृदिवस पर उस स्नेह का नमन जो हर जीवन को चुपचाप संभाले रखता है। समाचार टीम की ओर से आप सभी को मातृदिवस की शुभकामनाएं। देश विदेश की खबरों के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरी न्यूज विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया में बहत्तर साल की 72 years old की श्रीमती देवंती धनवा जो माला के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड प्लेंडी पापाई में 71 साल की 71 years old की श्रीमती ओमिला बिसुन पैदाशी नाम मेहंदी दिन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति रमेश बिसुन के मकान रॉयल रोड प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनुस थियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। B15 NHDC रामजीत लेन बालीसन रोस्पेल में नब्बे साल की 90 years old की श्रीमती अंजिले नारायणसामी रेड्डी जो माइली के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी बेटी वेदिता और मुगम के मकान B15 NHDC रामजीत लेन बालीसन रोस्पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया में 89 साल के 89 years old के श्रीपुरन नक्चेदी जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और आलिब्रियों रोड वाकवा रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे विशाल नक्चेदी के मकान बालगोबिन रोल मालेगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों का स्थल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री। जी हाँ, आज मातृ दिवस है, आज मदर्स डे है और स्पेशल दिन आप लोग मना रहे हैं, तो हम आपको कहते हैं मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, आज 31 रविवार का दिन है और आप लोग हमें सुन रहे हैं और इस महीने का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हम डेडिकेट करने जा रहे हैं हमारे सभी माओं के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं।
1: तू

कहते हैं दुनिया में माँ का प्यार ही ऐसा एक ऐसा खजाना है दोस्तों जो कभी कम नहीं होता और माँ वो पहली गुरु है जो बिना किसी स्वार्थ के जीवन का हर पाठ सिखाती है। चलिए अगला गाना बहुत ही प्यारा गाना 1966 में रिलीज हुई फिल्म है ये दादी माँ का ये बहुत ही प्यारा तराना।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, कहते हैं ना, माँ के कदमों में ही जन्नत बसती है और माँ का आशीर्वाद हर मुश्किल को आसान बना देता है। जी हाँ, एक बार फिर से आप सबको हम कहते हैं नमस्कार, आदाब, और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। वैसे सर्दी का मौसम है और आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो हम आपको कहेंगे बस अपने आप को अच्छी तरह से कवर कीजिए, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि आपने सुना ना, हमारी आवाज़ जो है कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि हम यहाँ पर है आप लोगों की सेवा में, लेकिन फिर भी हम भी कभी कभी ना बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन गाने के साथ साथ हम ठीक भी हो जाते हैं। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक कर। जी हाँ, खूबसूरत 80s और 90s के गाने हम चलाएंगी। और आज का जो पहला गाना है बाजीगर फिल्म से लिया गया। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है। और भूलिएगा नहीं, मैसेजेस आप कर सकते हैं 1525-06200 और नंबर आप हम आपको दे देते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं 4028070। जी हाँ, तो चलिए आज का जो पहला गाना है विनोद राठौर साहब आवाज़ में।

शाम और आपका ख्याल दोनों मिलकर दिल को सुकून दे जाते हैं। ये तो है और ये शाम ढलते ही आपकी यादें चांद की रोशनी की तरह दिल में उतर आती हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आप लोग साथ दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना रोहित जी के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं वो बासें से, जी हाँ, गाना वो मांग रहे हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो इस समय डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ। तो चलिए ये गाना आपके नाम सुना है कि ये आपका फेवरेट गाना है, तो चलिए चल पड़ा

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: सारे साथ बज चुके हैं दोस्तों और आप लोग साथ दे रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। कहते हैं ना, जो लोग हमेशा साथ रहते हैं उनकी अहमियत अक्सर तब समझ आती है जब वो दूर चले जाते हैं। किसी को इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो, समझो कि एक दिन वो आपकी ज़िंदगी से ही निकल जाए। और कहते हैं ना, रिश्ता तब कमज़ोर नहीं होता जब लोग गलती करते हैं, बल्कि तब होता है जब एक दूसरे की कदर करना छोड़ देते हैं। वैसे हम सब चाहिए बस प्यार ही प्यार, लेकिन अगर कभी कभी प्यार नहीं मिल जाता तो क्या करें, खुद से प्यार करना पड़ता है। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे देवरानी जी के लिए, जो हमें सुन रही है मेबर्ग से और साथ दे रही हैं। और साथ ही साथ में युधिश, जी हाँ युधिश जो रहते हैं कैटोबोन, साथ दे रहे हैं और गाना वो मांग रहे हैं अपनी मंगेतर छाया के नाम। केके का खूबसूरत गाना, जो केके एक महान कलाकार जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनके गाने जो हैं, तो चलिए काइट्स मूवी से लिया गया।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:50 को है और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, कहते हैं कदर करना सीखो क्योंकि वक्त और लोग दोनों वापस नहीं आते, है ना। और हर वक्त अवेलेबल रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं, इसलिए जो लोग आपको कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, उन लोगों को आप सीने से लगा कर रखो क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं आते। तो चलिए, यहाँ पर दिलवाले फिल्म से लिया गया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम गाना चलाएंगे, खासकर अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं क्यूपिप से। और साथ ही साथ में यहाँ पर हम गाना चलाएंगे पास्कल के लिए, टाइगर गुरन जो हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, जैसे कि हमने कहा हम लाइव टिकटॉक भी करेंगे। और रियाज, आपके नाम भी ये गाना जाता है। साधना जी, साधना ये गाना आपके लिए। इब्राहिम आदम, आपके लिए भी ये गाना। और साथ ही साथ में उन तमाम लोगों के लिए जो 90s के गाने बहुत ही पसंद करते हैं।

0: दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। दोस्तों कहते हैं कल एक नया दिन होगा, आज चाहे कितनी भी मुश्किलें, नाकामियां या उदासी सामने हो, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। कल किसने देखा है, बस आज की थकान को अपनी हिम्मत पर हावी मत होने देना, क्योंकि कल की रोशनी अपने साथ नई उम्मीद, नई ताकत और नई शुरुआत लेकर आती है। बहुत धन्यवाद जो आप लोग साथ दे रहे हैं। और वैसे कि आपको पता है कि हम मना रहे हैं मातृ दिवस, जी हाँ, मदर्स डे। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना फिल्म हम साथ साथ हैं से लिया गया, आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करेंगे। आप हैं आरती जी, जी हाँ आरती जी, आप हमें सुन रही हैं इस समय। सूरज सजादा जो रहते हैं ट्रियो लियोन के लिए और उनके परिवार के लिए, नालिनी गोपाल बिल्टा आपके नाम ही, अब्दुल रिशाद जी आपके नाम गाना जाएगा, नीतीश बुलाकी जो है नाजिमा गोवर्धन, जी हाँ गाना वो मांग रही हैं खासकर अपने लिए, और नाज जो है गाना अपनी मामा के नाम, जी हाँ, और शावी भी मातृ दिवस की शुभकामनाएं दे रही हैं। और केल्विन भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम साथ साथ है फिल्म से लिया गया और खासकर हर दयाल नंदिनी जी के लिए, और चलिए पूरी एमबीसी टीम की ओर से जो भी माएँ हमें सुन रही हैं इस समय, आपको मातृ दिवस की शुभकामनाएं।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ, कहते हैं ना माँ बाप जो है हमेशा बच्चों का सहारा होता है और हमें यकीन है कि हम आज का दिन उन पर आधारित करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम हम चला रहे हैं और डेडिकेट करेंगे हमारे जो गाने हैं लेडी जागुआ, मयूरी और साथ ही साथ में तरुण, खासकर तरुण के लिए, तरुण राम जो हमें सुन रहे हैं खुद गर्ज का ये खूबसूरत गीत, और साथ ही साथ में माया हमदस जो है आपके नाम ही ये गाना हम चलाएंगे, वैदेही रोबिन जी के लिए, जी हाँ मिंटा गाना मांग रही है अपने मामा के लिए, और माला जी ज्योति गुली जो है उनके लिए भी गाना जाएगा, और साथ में ललित मोहन भट्ट आपके नाम भी। चलो थोड़ा सा नाच गाना हो जाए।

0: खुशियों की आवाज़।
1: आज बजकर 13 मिनट हुए हैं और आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। जिनके माँ नहीं होती वो हर दिन उस मोहब्बत को याद करते हैं जो बिना किसी शर्त के मिलती है। माँ का होना एक ऐसी नियमत है जिसका एहसास अक्सर उसके दूर चले जाने के बाद होता है। और यहाँ पर उन सभी माओं को हम याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें पता है आशीर्वाद जो है हमेशा अपने बच्चों पर है। और यहाँ पर ज्योति गुली अपनी मामा सांता, लेट मामा सांता के लिए गाना मांग रही हैं। जी हाँ, और सती जी जो हैं गाना मांग रही हैं अपनी माँ के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। और गाना जाएगा सानिता के लिए और खास कर माया रामदोस जो है गाना मांग रही हैं अपनी प्यारी बेटी स्वीटी के लिए और उसकी बेटी केलिना और सेजल के लिए। जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। और हैप्पी बर्थडे टू मोसी साकुन फ्रॉम सिचन परिवार, डल्टा मान परिवार, गुली परिवार और साथ ही साथ में राम डोयाल परिवार। और प्रतिमा जो जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनके लिए भी गाना जाएगा सिवा। और हमारे जो डीजे वाकिल हैं वो भी सुन रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और गाना वो मांग रहे हैं अपने गीनी दी के लिए। जी हाँ, चलिए गीनी शाह के लिए हम गाना चलाएंगे। और साथ ही साथ में लालवा प्रदीप आप सुन रहे हैं और गाना खासकर जेसन परिवार जो रहते हैं पायट फ्रॉम प्रदीप। और साथ ही साथ में हम गाना चलाएंगे रियाना। जी हाँ, रियाना गाना मांग रहे हैं अपनी माँ के लिए, जी हाँ, जो इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए वो दुआ मांग रहे हैं। तो चलिए चुनर का ये गाना उनके नाम

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। 8:20 हुए हैं जी हाँ। इस गाने में ये जो लाइन है, जब जब मुझ पे है उठा सवाल, जी हाँ, जीवन में सवालें आती हैं, कितने लोग सवाल करते रहते हैं हम पर, लेकिन माँ जो है हमेशा उन सवालों का जवाब देती है, हमेशा। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना हम चलाने जा रहे हैं, फिल्म करण अर्जुन से लिया गया ये गाना, पूजा विशाल बाल गोविंद के लिए जो गाना मांग रही हैं अपनी माँ के लिए, जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना। आश है जो गाना मांग रही हैं, विक्षा विदिशा, और गाना मांग रही हैं मामा आश्विना के नाम, और साथ में है राकेश जादू जी, उनके लिए गाना जाएगा नमस्ते आपको, और सान के लिए भी, जी हाँ, सान जो हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनके लिए गाना हम चलाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और संजय बंडुआ जी हैं, आपको भी हम कहेंगे बहुत धन्यवाद।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:27 हुए हैं और यहाँ पर याश जो है हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, उनके लिए हम गाना चलाएंगे और साथ में दिनेश गोपी है, आपके नाम भी, थैंक यू सो मच।

और यहाँ पर ज्ञाना सीवू सरन है और गाना वो मांग रही हैं अपनी माँ के लिए और धनवंती चितू जी गाना मांग रही हैं किशन रोहन और उनकी मामा के लिए और साथ में चितू परिवार के लिए परवीन जो है जो हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच और ललुआ प्रदीप जी गाना मांग रही हैं अपनी बेटी निवृत्ति जो अपना जन्मदिन मना रही है और वो फ्रांस रहती है पापा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और फिदू दुलजीत है जो हमें सुन रही है इस समय और उनकी मामा जो इस दुनिया में नहीं रही है और साथ ही साथ में शैलेंद्र रघुनाथ जी हाँ आप हैं शैलेंद्र जी आपके नाम ही हम गाना चलाएंगे और साथ ही साथ में ईशा जी जी हाँ ईशा जो रहती है कठुबोन उनके नाम भी ये गाना जाएगा

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: माँ जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। जी हाँ, 8:10 हुए हैं और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं आरती राम सहाय के लिए। जी हाँ, उनके नाम हम गाना चलाते हैं सूर्या। धन्यवाद आपको जो आप साथ दे रहे हैं। और आरती, जी हाँ आरती जी तो हमने कह दिया। और विकास कृपा है जो रहते हैं रोशतेया। तो चलिए गाना हम आपके लिए, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर 80s और 90s के गाने हम चला रहे हैं। और साथ ही साथ में शकीला है। शकीला नमस्ते आपको। तो चलिए मूड को थोड़ा सा हम चेंज करती हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं निशी जो रहती है रोजिल। गाना वो मांग रही है पापारा जैन और मामा देविका के लिए, लेकिन यहाँ पर गाना कुछ और ही मांगा उन्होंने। साजन फिल्म से लिया गया। तुमसे मिलने की तमन्ना है, क्या करें। और हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे राकेश जादू के लिए। जी हाँ, राकेश जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उन सभी लोगों के लिए जो आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो आपके नाम भी हम ये गाना डेडिकेट करते हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: 8:40 हुए हैं और जैसे कि हमने कहा ये टीज़ और नाइटीज़ के गाने स्पेशल आपके नाम हम चलाएंगे। चलिए एसपी बाला सुब्रमण्यम के बाद हम सुनेंगे किशोर दा की आवाज़। फिल्म का नाम है नमकीन। 80s का गाना आपने फरमाइश की है, आप हैं रोशन जी जो हमें देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। आपके नाम गाना जाएगा और साथ ही साथ में जनिता है जो रहती है न्यू ग्रोव, गाना वो डेडिकेट कर रही है अपनी बहन संध्या और रंजिता के नाम। और आना है राजन कुजन है, हैप्पी मदर्स डे, आपको भी हम मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और आप है शारदा लखनऊ जी, जी हाँ गाना वो मांग रही हैं कावेश हर्षा और श्रद्धा, श्रद्धा लखनऊ की ओर से। और साथ ही साथ में शिवानी जो है सुन रही है इस समय, गाना वो मांग रही है अपने पापा, पापा का नाम है रजन। तो चलिए हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू, वैसे ये तो नेक्स्ट वीक को हम मनाएंगे, तो साथ देने के लिए धन्यवाद दोस्तों हमारे 80s लवर्स के लिए।

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी, कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी तीन बेटियां निमकी, मिट्ठू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है।

0: शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची, और मंजली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है, बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।
1: दिलों की आवाज, की आवाज,
2: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं, और यहाँ पर प्यारे सुदेवी जी की गान के लिए गाना हम चलाएंगे। और साथ ही साथ में ज्योति माचा, उनके नाम भी गाना जाएगा, रिडवान जो है, और साथ ही साथ में गाना खासकर 80s का जो गाना है कृपा जी के लिए, जी हाँ, आप तो ऐसा ऐसे ना थे फिल्म से लिया गया, मनहर उदास जी की आवाज़ में तू इस तरह। वैसे ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लाजवाब है, वन ऑफ माय फेवरेट। हमें पता है कि ये आपकी फेवरेट भी है।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलो मनाते हैं प्यार का जश्न, क्योंकि प्यार हमेशा जिंदा रहता है और प्यार जब जिंदा रहता है तो हम को हिम्मत मिलती है। दोस्तों, रूप कुमार आतुर की आवाज़ में इस गीत के साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: सब संगतियालो के आओजी प्रताप सिंह सितालो के से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सब संगतियालो के अपनी स्वागत करते जा। आज है दिमास की रात 31 मई साल 2026। सब संगतियालो के स्वागत करते अभी से लेकर रात के 11 बजे प्रस्तुत बात लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। ये प्रोग्राम चली दोनों चैनल पर रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और आज हनी मनावंते सब मदर्स डे मातृ दिवस हैप्पी मदर्स डे सब माता लोग के और हैप्पी फादर्स डे सब पिता लोग के भी हैप्पी मदर्स डे हैप्पी फादर्स डे। तो आशा करते हैं कि जो त्यौहार है माँ के त्यौहार अच्छी तरह से मनावत हुआ अभी फिनी नहीं होलबा अभी रात के 9 बजे बा और अभी से 11 बजे ले तो त्यौहार हुआ करते रहिए और साथ देते रहते। जितना मामा लोग हम की सुनता है जितना माता लोग सुनता है जितना माँ लोग सुनता है चाची दादी नानी लोग सबको जो माँ स्वरूपा हवन सा तो सबको एक हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। और गीत तो लोग के नाम चले एक साथ सुने है गीतवा

और मां-बाप की दिल ने चाहे दुखा के कहे कि मां-बाप भगवान के दूसरा रूप है हां कि नहीं और अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सन गाना मां-बाप के लाडला बेटा हां तो बहुत ही प्यारा सन गीत है और है गीत तो चलावते इस माधव की ओर से और मामा टीना के बेटा हैप्पी मदर्स डे और पापा कवि के हैप्पी फादर्स डे और दादी माला पुपुरीना और है गीत साइलेंट की ओर से चलिए कर्मा रीता सितालू के हैप्पी मदर्स डे साइलेंट बोला था अपन मामा के तो साइलेंट साइलेस रानी स्वस्ति अनुष्का परी सब सितालू परिवार रीता सितालू के बेटा हैप्पी मदर्स डे और संगीता अमीरन वो भी रीता सितालू के बोलता हैप्पी मदर्स डे और संगीता अमीरन रहेला लाहौजा ऊपर माँ के बोलता हैप्पी मदर्स डे को माँ रहेला कस्टेल तो सब मामा लोग के नाम हैप्पी मदर्स डे माति दिवस की ढेर मना शुभकामना और प्यार और बड़ी सी जो माँ जो है ये बहुत कदील जो है बहुत बड़ा है बहुत विशाल है ये अपन लड़का खातिर सब कुछ सकेला करे ये माँ जो है कभी काली और चंदी के रूप धारण करके अपन लड़का के हर मुश्किल से बचावेला तो सब माँ लोग के बारम्बार प्रणाम बा तो चला सुनब जाए गीत माँ बाप के लाडला बेटा

स्पेशल मदर्स डे। हाँ तार फेत मामा बा सब कोई नाचता गावता झूमता धेर कोई पन सास ससुर लगे बा तो धेर कोई पन माँ बाप लगे बा और भी रात के जश्न हुआ था नाच गाना धूम धड़ाका क्या बात है ऐसे नचते गाते रहे उनके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और आज की रात गमत की रात प्रताप सिंह सितालू के संगे रात के 11 बजे ले हे हे। और बोलिए सब माँ जननी है माँ जन्म देवेला माँ पालन करेला पोषण करेला और माँ के देवी के रूप देवल करवा दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ हमने की हिंदू धर्म ग्रंथ में वेद उपनिषद में दिख बा तो माँ के महत्वपूर्ण स्थान बा तो एगो लड़का खातिर सबसे जरूरी है ओकर माँ अपन माँ के कबो ना भूलैया पर विडम्बना की बात यह है कि जेकर माँ बा तो उन्हें गदाना था जेकर माँ नहीं बा तो रोवे के पड़ता पर चेहरा जब माँ बाप हमने की आंखों के सामने जिंदा बा तो चेहरा लोग की देखभाल करे के हों कि नहीं तो माँ बाप अपन लड़का के देश से देखभाल करेला लड़का लोग भी जब बड़ा हो जलन से तो लोगों के चाहे अपन माँ बाप की देखभाल करे कि हर लड़का के हर लड़का के ये वो कर्तव्य है। तगड़ा गीत माँ पर भी है नीरज गुप मधु गहले वने गीतो है गीतो चलाओ तीसरा खासम खास संजय बिहारी की ओर से कल पत्नी सुरेखा पिता कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब परिवार के लिए और सब बिहारी परिवार है वंशा राविश मंजू कैसे भैया राविश मंजू की ओर से कर माँ की बोलता हैप्पी मदर्स डे राविश मंजू रहेला मोहताबा और है गीत चलावत ईसा संदेश लता अंजलि शिवानी और सब भैरव परिवार के नाम और है गीत तो खासम खास चलावत ईसा दुनिया भर में जितना माँ लोग हमने की सुनता जितना दादी लोग माँ लोग हमने की सुनता है गीत और लोग के नाम हैप्पी मदर्स डे बन फैद में बोला था एक बार फिर ढेर माना शुभकामना ढेर माना प्यार सब माँ लोग के नाम

माँ बाप की लाडला बेटा और माँ बाप बरद बड़े ही लाड प्यार से बन लड़का लोग के पालन पोषण करेला हो कि नहीं और बड़े प्यार से माँ बाप लोग लड़का लोग के पोसेला लड़का लोग के बड़ा कर पढ़ावेला लिखावेला तो परिवार सुखी परिवार रहेला जहाँ पर लड़का लोग के माँ बाप दोनों के प्यार मिलेगा कोनो कोनो परिवार ऐसा बनी देख रहे हैं समाज में कि जहाँ पर बाप नहीं बा या माँ नहीं बा कोई के बाप मर गल बा या कोई के माँ मर गल बा या कोनो केस में ऐसा बा कि माँ बाप डिवोर्से हो गल बा तो एक बुरा प्रभाव लड़का लोग पर पड़ेला एगो लड़का अच्छी तरह से बढ़ेला जब ओकर माँ बाप दोनों के ओकर प्यार और सपोर्ट मिलेला आज तो मदर्स डे मनावते ही सर सब मामा लोग बड़ी खुश होवन सर तो अगला गीत चलाओ अब सर जिमी दुखिया के और सर माँ खातिर गीत हैप्पी मदर्स डे राजमन्ना सुदेश जसवा सुदेश जसवा की ओर से राजकुमार युकर माता जी खातिर गीत राजमन्ना की ओर से सब माता लोग के नाम गीत मांगत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना माता लोग सुनाता है मॉरिशस में दुनिया भर में तो गीत लोग के नाम भी इंदिरा चिंतरा माता जी गीत और खातिर और तोहर सब परिवार के नाम अगेमा जी हाँ गीतवा गैलन संतोष महादेव कुछ समय पहले गीत सुना वो गीतवा रहल मंगल राम सिंह के गावल ठीक बा अब सुनबा संतोष महादेव के गावल गीत अगे माँ बड़े प्यार से बोला था अगे माँ बड़े दुलार से बोला था तू भी अपन माँ के बोले अगे मो कैसे

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।

0: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो।
1: स्पेशल मदर्स डे
2: हर साल के मई महीना के अंत में यानी कि मई महीना के अंतिम दिवस की ये त्यौहार मनाया जाता है मातृ दिवस दा जल्दी 31 मई है दिवस की रात 9 से 11 बजे ले भोजपुरी चर का प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल और मातृ स्पेशल ही रहेगा कहे कि माँ जो न था वो एकदम महान है माँ के पैरों तरे स्वर्ग बा तब माँ की जो प्रवृत्ति है ये जानवर में भी देखल गल बा जैसे गो मुर्गी अपन चूजा लो के निमन से गरम से रखेला और कोनो जाला को चूजा के पकड़े तो मुर्गिया लाबिक से देवेला घानी और एगो बकरी भी जब बच्चा दिलक बा जब बकरी के बच्चवा के देख बा छुई बा मयुआ हला करेला हो कि नहीं और कुत्ता भी जब बच्चा देवेला देखिए ना कैसी जोली से अपन लड़का लोग के दूध पियावेला तो जाके बच्चवा के लिए बा वाई काटे हैं काहे कि वो सोच रहे तो बच्चा के चोरी कर जाते हो नहीं हो ये ममता है यही माँ के प्यार है एगो माँ अपन लड़का के रक्षा करेला चाहे कोनो भी हो चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो वो अपन लड़का के कभी बुरा नहीं चाहेला और हमने की धर्म ग्रंथ में देख रहे हैं इसे कैसे देवकी भी माँ कह लेलन यशोदा भी माँ कह लेलन कई कई भी माँ कह लेलन और देवकी तो जन्म दिला कृष्ण भगवान के पर यशोदा ओके पोस के परा कर लग कर और दूसर बगल रामायण में दिखी रहा सर कई कई सुमित्रा ये लोग राम भरत के पालन पोषण कर लन सर और कई कई चाहे कितना भी बुरा क्यों न रहल पर राम हमेशा कर आदर करता है तो माँ और बेटा का जो रिश्ता है ना ये बहुत खास है जब पर गो माँ अपन लेका के बन सीना से लगा के अपन लेका के बन दूध पियावेला या अपन एगो माँ अपन लेका के दुलार कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बहुत प्यार से आशीर्वाद देवेला और ये जो दृश्य है जैसे यशोदा और कृष्ण भगवान के दिखब सके से कृष्ण बोलेला मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो माखन खा ले लग बा मुँह में लगल बा माँ से बोलता माँ हम माखन नहीं खेले और माँ भी कुयो नहीं होगा बोलता हाँ तूने माखन नहीं खायो लड़का लोग तेरे मुँह में माखन पो दिलक अरे अमर लल्ला अरे अमर लड़का तो देखे ना ये माँ और बेटा के जो प्यार है जो अपनापन है तो बड़ी झोली है देखे के तो अगला गीत जो है माँ ही पर है नीरज गुप मधु के जवन गीतवा है गीतवा आशा जानू की रस कर माँ कुमारी खातिर शुभम है गीतवा खातिर है गीतवा में शुभम की भी नाम जो रही जा अगर दीदी भारती जीजाजी और नेफ्यू शिल्पा प्रशांत सिवालक अपन माँ राधा सिवालक के बोले दिन हैप्पी मदर्स डे चंपा और देविका राम गतिया और लोगों मदर्स डे मनावत हवन सर दे मना प्यार और आशीर्वाद ललिता कुशल हवन त्रियोले से है गीत अनिता लाल जी खाती जो रही मोदल बेय और अनिता हवन फ्रीकॉन फ्लाक से आफेज हवन सैंपिया से तो चले साथ सुनई माँ पर गीत नीरज को मधु की आवाज़ में माँ

रात के समय बाद चारों ओर घनघोर अंधेरा छे लगभग ठंडा ठंडा हवा बहता ठंडा करता वो छोई तरह का प्रोग्राम सुना था तू हमने की स्टूडियो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस से या एमबीसी के रेडियो जोन हम मौका में तेरे को हमने के साथ देवत नाचते वन गावते वन झुमते वन अब हम थोड़ा एगो एगो एगो एगो, एगो जोक सुना तो अच्छा है हंसे के बोलने से डॉक्टर लोग बोले ला अच्छा हंसे के जितना हंसबत और हंसोते उतना अच्छा रही तो ये प्रोग्राम है भोजपुरी तेरे का चलेगा रोज के लेंदी से लेके दिमाग से रात के 9 से 11 बजे ले राजा दिमाग के रात अजय प्रताप सिंह सितालू के संगे एगो जोक सुनाओ पे तो एक दिन एगो छोकरा रहा तो वन पर रहल का बोले कुल नहीं कर रहल तब कारो में काम करे तो ओकर गात जोन गात से कारो में काम करता घातवा गरम होगल एउटा आयो मर घात के लाफी लग गल बा वो का कर ला घातवा लेके गल डोकते लगे अब डॉक्टर के बताया डॉक्टर जी देखा ना मर घात के कैसे कैसे गरम होगल बा के लाफी लगल बा अब दुखते तो बोली का बोला भी तो अनपढ़ आदमी नहीं जाने लग कैसे स्पीक कर अब तब बोले जाने ला बाबू एक लाफी लगा बा ना जाके पानी में डाल दिया ये ठंडा हो जाए ठीक हो जाए तो सच्चे के अदमिया गल घरे था घाट के पानी में दलक तो घाट ठंडा हो गल बड़ा खुश हो गल तो और एक बार जो है दूसर बार होकर घर में दादी मारा धोल रात की दादी की तो बड़ा जोर लाफी लगल बा अब छोकरा तो पारिश करा था कैसे दादी की जाए दुखते लगे तो सोचलक देखा ना हमारे गात मारा दल तो के पानी में अच्छा हो तो दादियों के पानी में डाल दिला तो वह अच्छा हो जाए वो का करलक और द्वारी में एगो दौपी रहल अब छोकरों का करलक दादी की जाके दौपी में धकेल दिलक अब जब धकेल दिलक तो वहाँ लालमिया रह तो दादी के फुसदौन जो पनिया में इतने तरह का फुसदौन झलका था तो ये सोचा था दादी अच्छा हो गल लड़का का सोचला कि उस तरह घाट के पानी में डाली तो अच्छा जाए जब दादी के फौजदान चमका था तो ये सोचा था दादी मुस्कुराते हैं तो दादी के प्राण चल गए भैया हाय लड़का बुरबक का कर दिलक हो अगला गीत चलावती सर सेटो में एसएसएस के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम

वहां के रेक्टर निकी नाम भी और मिसेस दीना के नाम जो अंग्रेजी पर हावेला और हैगी चली वीना कुपुसामी की नाम का सब लेकर लो खातिर सुलमा दुखी हैगी तोहरो खातिर तो सब परिवार खातिर विश्वानी बाबूलाल हैगी तोहर नाम और तोहर सब परिवार के नाम

तो सच के भोजपुरी भाषा बहुत जोरी बा और बहुत अच्छा लगे रहा भाषा बोले के भाषा बचाए के बड़ी जोरी है भोजपुरी भोजपुरी भाषा बचाते रहिए और हमने के मान और शान बढ़ाते रहिए और अभी रात के समय बा और देर को हमने के साथ देवत है वन खजोली से सब हरकू परिवार लोगों हेलो हरकू परिवार कलकत्या परिवार लोग भी हमने के सुना था तगला गीत लोग के नाम ड्रैगोस्टिन ते नमस्ते और गीत हुआ गैले हवन कृषि और नांसी और जाने जैसे कि रात के समय जो है रात के समय भी काम होला ढेर मना जगह में जैसे पुलिस स्टेशन में फायर सर्विसेज में कॉल सेंटर में साशोमितियों में सगरो काम हुआ था तो जितना कोई काम करता अभी बोंको आज बोला था इस तो ढेर कोई अभी रेपित मामा करते बा नाच गाना धूम धड़ा का मस्ती और मामा लोग अपन निकालो खातिर अच्छा अच्छा तगारी पकड़ दे आज ढेर कोई अपन सास ससुर लोग बात बीस ऐसे हंस से गाते रहिए हमने के साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई नींद नहीं लगा था तो गीत तो लोग के नाम नुमा नुमा ये चल अब नाचब से संगे संगे आली एक दो तीन स्टार्ट

और तभी ऐसे ही नचते गाते रब सा ढेर कोई नाचा था गावा तबनी के संगे संगे नमस्ते हो ला ला ला ला कैसे जोड़ी की तरह ना और विषय कैसे ही नचते गाते रब सा भोजपुरी तर का प्रोग्राम एमबीसी रेडियो पर रात के 11 बजे थी और अब अगला गीत चलाओ अब सा समधि समधि के लगल बड़ी हिचकी सौंधे मौसम में उरित के पानी खोजेरा अब सौंधे मौसम में उरित के पानी कहे खोजेरा तो हम नहीं जानते

और उरीद से याद और उरीद की तकारी हमने की माँ दादी लोग जब उरीद की तकारी पकावे थे सन सुंधा मौके उरीद के बनेरा उरीद के सकबा मुतावर में डाल के पकाए उरीद के मसाला में पकाई बा रोगाई में पकाई बा उरीद के बिंदाई भी बनेरा और उरीद तार के भी सकबा खाई और उरीद के पनेरा बोई करे के झोली से बोई करे तो लाल हो जला तब के तैयार करियो का सब्जी पीस डाल के हाँ कि नहीं तो चला अगला गीत सुनब जा समधी समधी के लगल बड़ी हिचकेगी तो चला दे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के हमने के सब बी हनर्स फ्रेंच के स्टूडेंट्स लोग के नाम एम ए फ्रेंच स्टूडेंट्स और पीएचडी में हमारे जितना स्टूडेंट्स लोग पीएचडी में एनरोल हो पीएचडी फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस फैकल्टी ऑफ सोशल ह्यूमैनिटीज तय गीत लोग के नाम समधी के लगल हिचकी जरा बच के रहिए अभी कहने के हिचकी लगता तो सुन पानी पी लिया हो Hai gitu an Chachi Sonia Katir Hawan modal ni si Chachi Sonia Hai gitu an Katir Chalik sat nachi Gawe jume kamar wa dolai Chachi Chitra Hawan modal ni si Kar gharula Or sab kar pariwar Gyan Hawan Kar gharula Chitra ke usi Gyan ke Gyan ke naam

अफसाने बॉस में अमृत की पानी का एक खोजेला आपका जिन्नी उस शराब की नशा में बाकी का था सारे मौस में उड़ीद की पानी खो जाता अब एक दो दिन का चुटकुला हो जाए तो एक महिला रहा तो अपन पति से ढेर प्यार करे तो अगर पति जो नहीं दिन कर देहांत हो गया तो बेचारी फूट फूट के रोता काहे अंगे छोड़ के चल गई देगे हम के कर संगे जी अब गे अके छोड़ के चल गई देगे भर भरी जवानी में दादी नानी लोग बैठा बार दादी लोग बैठा का कर ब बेटी ओकर समय चला जाय द तू धीरज के संगे जिए थोड़ा सुन धीरज धर के जिए सब ठीक हो जाए तो सब कोई रोआ था मरनी उठ कर तो दूसरा दिन छोकरी का करता हूँ कि अभी मैं घूमता तो गो छोकरा के हाथ में हाथ डाल के घूमता तो बता दादी लोग बता हाय रे अमर माँ क्या करता कि छोकरी कर पति की देहांत हो ला छोकरा संगे घूमता हुआ तो चुकरिया बोले अगे दादी तू ही नहीं बोले रे धीरज संगे जिए के एक धीरज के संगे घूमत नहीं दादी अब काहे आमे देव तुम्हें एक धीरज के संगे घूमत नहीं हो तू काहे आमे देव तो वाह हो।

और एक जोक देखो छोकरा पर माँ बाप के लिखी गर्ल छोकरी आगे के जमाना में अगवा लोग जाता था अगवा छोकरा के माँ बाप के लिए गर्ल छोकरी लगे तो छोकरी के माँ पूछा था छोकरा से तोहर बेटा कौन ची करेला हो दादी इतना पढ़ल नहीं रहल ना पूछा कौन ची करे तोहर बेटा तो छोकरा में हमारा बेटा ब्याह कर लगबा दादी बोले ब्याह कर लगबा आलू बैगन बेचेला ब्याह कर लगबा बाप रे बाप आलू बैगन बेचेला छोकरा अब दादी का जाने रहा ब्याह के मतलब कुछ सोचा बैगन आलू बेचेला तो एगो छोकरा जो ना फोम सैंक कंपोजी करता है एग्जाम में हो गया तो नतीजा सर सब में क्रेडिट निकल लग बा तो मेरे बाप क्या के बोलता है पापा दो तू चीजें मुझे क्रेडिट हम सब चीजें में क्रेडिट मेरे बाप पापा तो कहा बाप अनपढ़ रहा नहीं जाना था लिखा तो बोले हम तो के इतना मेहनत लगन से पैसा दे के तो के पढ़ाई दी लिखाई ली तू खेजी लेके आलो वे ऐ हम तो सोच ली तू सब में सौ निकल तो खेजी लेके आलो वे का कर अब सब बोलते तू काहे खेजी लेके आलो वे अब और बाप का जाना था क्रेडिट के मतलब कि लड़का पास से होगा बट नहीं मन से और एक जोक सुना जा तो चिंगरी लोकी माफ करिए जा चिंगरियों के समुदाय में शादी होता हर मोट का पानी बरसता है जो का रिजल्ट सुने ले इसे पर संग्रह में तो प्रताप जी आज रात की सुना था ना तो चिंगरी की शादी हुआ था तो चिंगरी की कौन माँ और न हो दूसरा चिंगरी की माँ बाप एक बार है ना छोकरा चिंगरी होने छोकरी चिंगरी की माँ बाप लोग बा तो सब कोई नदी में आवा था छोकरी के शादी कराई के छोकरा के बाप हो गए थे जो कहते बाढ़ निशान हो हाउ तो सब चिंगरी कोनो चिंगरी इधर छटक गल कोनो चिंगरी उधर छटक गल अब चिंगरी के माँ छोकरा के आवा था परछावन कर दे आरती उतारी तो माता जी तो आरती उतार देखा तो हर बेटी चिंगरी वहाँ पर कहानी कहाँ लाबू में जाता तो ही रह चिंगरी की कहानी

ताशा कहते हैं तो खूब हंस ले जा, मुस्कुरावत हुआ तो ऐसे ही हंसते गईती रही है। अब एक गीत सुना आपसे, गीतों में संगे संगे नाचब से गाओ आपसे, जोली छोकरी से प्यार कईला जिगर खातिर हम रोज जीला। गीत के गईले वन गीत गईले कुणाल हिरीलाल है गीत हमने चलावत इस विमला के नाम और रंभा हवन राशवी से उनके साथ देवतवन अजय पूनम चिंता राम हवन ऑस्ट्रेलिया से दीपा दुखी दीपा तिवारी दुखी तो कर पति केविन कर बेटा आप हवन कनाडा से और जैसा कोई हमने की कनाडा में सुना था गीत खासम खास सुलो के नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करीला। अरे संगे संगे है शर्मा की नहीं सब कोई के जहाँ गाय के नाचो के क्या क्या मदर्स दे बा

सब जोड़ी जोड़ी छोकरी लोग जितना कोई सुना था हमने के बटरफ्लाई हमने के तितली लोग हमने के लड्डू लोग है गीत तेरो के नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला कैसन बहु छोकरिया हो

0: मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
1: Seven days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: रात के 10:12 और एक घंटा बाद निकेत लोग के संगे जी हाँ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन तू सुनते हो एमबीसी रेडियो हम मौका में सिताई हमने की प्रसारण चताइए से हम है माइक पे तो लोग के दोस्त और तो लोग के संगतिया और जी प्रताप सिंह सितालो अक्सर तू हमने के टिकटॉक पर देखेला और अब सुन आज टिकटॉक पर नहीं है सर थोड़ा सुन आज रेडियो पर आई सर पर टिकटॉक पर जरूर आवाब सर को दिन पर इस सप्ताह खूब टिकटॉक पर आई सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर ढेर कोई हमने की देख लक और अपन कमेंट्स भी जाकर रहा था जितना कोई हमने के टिकटॉक पर देखेला लोग के बहुत बहुत धन्यवाद जितना कोई रेडियो पर हमने के सुनेला दिल की गहराई से शुक्रिया और अब भोजपुरी तरह का प्रोग्राम जारी बा रात के 11 और यार घंटा बा तब इन राशन से ढोलक मंगाओ अब सर ढोलवा बजाओ अब सर चाची नानी दादी लोग सब कोई सारी कस के आवतवन बरा जोर नाचे हमने के संगे संगे इंद्रासन से ढोलक मंगेली खाली ढोलक मंगेला से काम नहीं चले बिपरी लोटा बजाए के झाल बजाए के करताल बजाए के तब न सब कोई नाचे अब सर आज फिर मामा बा काहे शर्माते हो मामा पापा लैका लोग दादी नानी चाची मामू चाची लोग सब कोई संगे संगे नाचे तर मौदाल बे में एगो संगत्या बीबा को नाम बा रवि रवि बतवन चचा प्रताप सिंह एक गीत चला देना इंद्रासन से ढोलक मंगेली चलावत हो तो और खतेर और ये गीत चली विमला खतेर विमला हवन थाबुचिक से निशान सिंह चुबा उकर पत्नी उकर बेटा पत्तो बेटी दामाद और सब चुबा परिवार के नाम है गीत इंद्रासन से ढोलक मंगेली और है ये तो चलावत है सर वो सब संगत लोग कहते जो अभी रात के ड्राइव कर रहा था सस्ती बनवाली कैसे दोस्त अकेले अकेले गुड़किया मार मार डेला हो अंक ने बुलाईला का हो फिर मामा बाप सोची तू बुलाई बग दू गुड़की मरती से संगे ना छोड़ दे गुड्डू सर हरा सस्ती बनवाली अक्सर हम के साथ देते रहना अभी रात के खूब गबड़ कर रहता था ड्राइवर लेके जाते हुआ कहूँ या ड्राइवर लेके आवत हुआ धीरे धीरे बनवा चलाइया हो और एक गीतवा सुना ना इंद्रासन में का हुआ था

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

स्पेशल मदर्स डे। सगजा लोग आजकल बॉलीवुड में नई नई फिल्म आवता और बेशक मई महीना मई जून जुलाई में ये सब फिल्म रिलीज हुई तो एगो फिल्म के नाम है किंग और कर में रही शाहरुख खान और है ये साल 2026 की एगो बड़ा फिल्म रही। दूसरा मूवी है अल्फा एक में नजर आए आलिया भट्ट और शर्वरी अभिनीत। फिर बैटल ऑफ गलवान एक दूसरी फिल्म रही कल में सलमान खान नजर आई और भूत बंगला का रिलीज हो गलबा कल में अक्षय कुमार बार और प्रिया दर्शन की फिल्म है कॉमेडी से भरपूर। और एक फिल्म का नाम रही बंदर कल में रही बॉलीवुड बॉबी माफ करिए अगला फिल्म है बंदर कल में बॉबी देओल नजर आई अंजा। और मैं वापस आऊँगा इस फिल्म में नजर आई दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह। जी हाँ कमाल की बात है नसीरुद्दीन शाह अपन कमबैक कर रहा था इस फिल्म में वापस आऊँगा। और एक फिल्म रही गबरू एकर में सनी देओल नजर आई है। और अभी हाल में एक फिल्म रिलीज हो बा मॉरिशस में आजकल ये जो फिल्म है चला था सिनेमा घर में का नाम है पत्नी पत्नी और वो दो। ये को बॉलीवुड मूवी है और ये फिल्म रिलीज हो गल बा ये फिल्म में देख बा आयुष्मान खुराना के और फिल्म को कॉमेडी रोमांस कहानी है और एकर में ओकर पत्नी बा और वो यानी कि दुगो महिला बा ओकर साथ और कल भी ढेर मना गलतफहमी हो गलतफहमी प्यार और कॉमेडी की कहानी है। मुख्य कलाकार

कलाकार भाई फिल्में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गाबी, राकुल प्रीत सिंह और बेशक जो 2019 के फिल्म रहल पति पत्नी और वो ये कर सीक्वल है। तो हाई फिल्म कहाँ कितना सक्सेसफुल रही थी आने वाला दिन में बतावल जाए, पर अभी कतरी फिल्म खूब चलत है और कॉमेडी रोमांस से भरल भाई फिल्म पति पत्नी और उसके दो। अभी चला अगला गीत सुनब, जलसा लालबा, अभी जलसा तो सुरो बाबैया, अभी जलसा रात के 11 बजे रे चलते रही। और श्यामा रघुनंदन हम के साथ हुआ था, हेलो जी नमस्ते, गीत और खातिर तो सब परिवार लोग खातिर है गीत कौन मॉडल के वंदिनी के नाम कर खरोला और कृष्ण परिवार के नाम चलावत ही सर। और नतराज रामकोरन रह रहे नोबेल फोन से गीत और खातिर तोर माता जी तोर पिताजी तोर भाई बहन और सब रामकोरन परिवार खातिर जलसा लालबा। और ये गीत चाहते सर सब संगत आलोक खातिर जो हमने की सुना था ये वक्त रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चल एक साथ हम यो जलसा करें।

ए बाबा के हला कर रहता इसे और देख बोला था लेलू हला कर रहता पीछे सुनी ना सोता कि हला कर रहता इसे डर की बात नहीं बा कहे कि मॉरिशस में लेलू नहीं बा वुल्फ वुल्फ नहीं बा मॉरिशस में तो काहे डरत हो सर अब देखो बोला रात के भूत लोग कह रहे नहीं हो भूत प्रेत कुछ नहीं बा काहे सब बात सोचेला वासी नहीं बा तो लोग संगे है कान बुलन से रात के जब अंधार रहेला तब भूत चलेला झूठे आजकल भूत से नहीं आजकल जिंदा इंसान से चना डर के भूत बेचारा मर गल तो भूत हो गल पर जिंदा इंसान है बहुत हानि पहुंचावेला आज छोटा छोटा बात में इंसान गुस्सा करके कोई के सके थप्पड़ मार दे या कोई के खून कर दे तो जिंदा इंसान से डरिए भूत से नहीं भूत प्रेत कुछ नहीं है तू अपन भगवान के नाम लिया और भूत प्रेत अगर लगभग भी करी तो हनुमान चालीसा करिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे और ऐसे ही हमने के संगी घमट करते रहिए हमने के साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर अभी रात की 11 बजे तेरे के साथ दिवब जा और आजकल दिक्कत ऐसे ढेर कोई के इलाज के भी लगता है सर्दी खांसी जुकाम घर में एक जना के अगर लाफिए लगता तो पहले पति के लगता फिर पत्नी के फिर लड़का लोग कहते लाफिए और सर्दी खांसी जुकाम से बचे खातिर थोड़ा दिवब में जुकामा दे गाँव में है कुछ बोले में जुकामा गाँव में तो इलाची जान जैसे हरदी में जैसे हरदी के पीस के दूध में सब मिला के रात के सूते वक़्त पी ले बता सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाए या जीते पिया में थोड़ा सुन लीमो डाल दिया या सिथों या व्यागामो आगे तक व्यागामो दे रहा थोड़ा सुन पैसे करके और जीते पिया में गरम गरम डाल के पी लिया वो में थोड़ा सन जिमियल डाल दिया अच्छा रहा और आजकल दिखा दी बाजार में हर प्रकार के फल बा जैसे विटामिन सी वाला मोदागिन माफ करिए मोदागिन पोम जोरस कीवी पॉम्पलेमूस और ये जो बंगासाई जो कि बंगासाई बोला थोड़ा तीखा रहेला तो हो सक बे विटामिन से भरल मोदागिन बंगासाई पोम जोरस कीवी पॉम्पलेमूस खाइए रोज के गो जोरस खेब तो थोड़ा सौती अच्छा रही और जैसे बीमार पड़ला भैया तुरंत हो गया डॉक्टर लगे नहीं कि घर में रहो ना अपन से हम कासे किन की पिए अपना कहे के है जो लाफी लगता एक जना के तो सब कुछ की लग जाता ठीक बा अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और अगला गीत सुना भोजपुरी गमत रोशन सदा सिंह की आवाज में अरे गीत तो आ रहा हाउस साल 2025 के बढ़िया भोजपुरी गीत में क्लासे हो रहा ताकि तो हमने चला होते इसे अनुपम खातिर अनुपम हवन कोतवाल से और बेस्ट फ्रेंड राजेश के नाम और है गीत संजय की ओर से और बेस्ट फ्रेंड साइलेंट के नाम चलिए संजय और साइलेंट जो ना बहुत बड़ी से संगत आज भी

0: और उनकी दोस्ती बराबर बात है। दोस्ती हमेशा कायम रही और हमने की और तुल की दोस्ती भी हमेशा कायम रही। क्या है कि हमने जब से एमबीसी रहा फोकसाइड में देमिल कात से लेके आज ले देमिल कात से देमिल वेंसी चला नहीं सर हमने की तुल की दोस्ती रहा फोकसाइड में एमबीसी फोकसाइड रहा तब और जब एमबीसी मौका मिली सर यौ पर भी तुल के संग गमन कर दी सर तो जितना कोई हमेशा एमबीसी रेडियो सुनेला रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस गीत तुल के नाम भोजपुरी गमत
1: भोजपुरी

0: सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: इस समय तो सुनते हो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर और रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 MHz पर। हम हाई दलों के संगत है अजय प्रताप सिंह सेतालू। हमके तो नींद नहीं लगता, हम तो गमट करते चलो के संगे संगे। तू भी गमट करते रहिए और सब चिंता के दूर करके, सब चिंता के भगा दे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता चिता के समान है भैया। चिंता नहीं करिए कोनो बात के, अरे आराम से जिंदगी लीजिए। अब सबको बता भैया प्रताप सिंह, ऐजन महंगाई के जमाना का कर भैया, दुनिया भर में महंगाई बा। जोन युद्ध होता है नौकरियों में और दूसर पे ही में इसे युद्ध होता तो खातिर सब चीज़ महंगा बा, इन्फ्लेशन भी बा, तो महंगाई तो बढ़ते रहेला। का कर भैया तो अब महंगाई बा तो खैबा नहीं है बोले था चल चेहरा खाई के ना खैब पीब तब ना तंदुरुस्त सब काम करे। तो अगर एगो काम से तोरा उतना पैसा नहीं मिलता तो एक दो काम करिए, को पार्ट टाइम जॉब खोज दिया कहूँ पर या ओवर टाइम ही सब करिए ताकि ज़्यादा पैसा मिली। अब चंद्रदेव जी बोलते मतलब पैसा के नहीं पीछे भागे के का हो कैसे बोला तो सब कुछ तो पैसा खुश है, पैसा बात सब कुछ बा भैया। आजकल पैसा के जोर पर दुनिया गोल गोल घूमता, मनी मेक्स अ वर्ल्ड गो राउंड। अंग्रेजी व्यक्ति वो कुछ नहीं ऐसे बोलक बा कि पैसा दुनिया के गोल गोल घुमावेला। पैसा बात सब कुछ बा भैया, पैसा नहीं बात कुछ नहीं बा, पैसा बात सब कुछ तो आगे पीछे घूमी। जोन दिन तोर पैसा फिनी हो तो सब कुछ तोरा भुला जाए, और जब पैसा नहीं रहे तो बोलते हेलो हाउ आर यू, जब पैसा रहे तो बोलते हेलो हाउ आर यू वेलकम। तो पैसा कमाते रहिए, मेहनत लगन से काम करिए, पैसा कमाइए। और हम तो बोला अगर पैसा कमाओ तो थोड़ा मन करता कौन चीज़ खाए के, कौन चीज़ पहने के, कौन चीज़ पिए के, कहूँ जाए के घूमे के, तो जी भर के जी अपन जिंदगी। हाई पैसा जो है हाथ के मेल भैया, आज बा काल ने नहीं सोचा कि सासौता हो जाए या संजीजा हो जाए तो हम पैसा से ई करब पैसा से ऊ करब, के जाना था कितना दिन जी। तो जितना दिन जी अब सर पैसा अगर हाथ में बा तो गमत कर, नाच गाव झूम और कमरवा डुलावा। ऐसन में है अगला गीत चली चंद्रदेव जी बोधन की आवाज़ में। हाई गीत चलावा थी इस विनती के नाम, विनती रहे नफरी कोपलाक विनती है गीत तोहर खातिर, तोहर माता जी तोहर भाई खातिर, कमला दिनू मोहताबा सेवन बहुत प्यार के साथ। और रेहाना हासनानी हवन फेनिक्स से है गीत तोहर नाम, तोहर भाई तोहर सब परिवार के नाम। और रिहाना हवन नतोदाम से भी अमी के साथ देवत हवन, और जितना कोई अभी अमी के साथ देवत है और मन करता नाचे के कमरवा डोलाए के तो चल एक साथ नाचे, पैसा के पीछे न भाग हो। अब पैसा के पीछे कैसे नहीं भागब सर, उधर भागता इधर भागता और पैसा गोल गोल घूमता।

भाई पैसा खातिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाला ना हां कब-कब पोस्ट में ग्रुप जानी रहला कब-कब पोस्ट में भरल पैसा रहेला तो पैसा जो ना बहुत जरूरी चीज है लइका से बड़ा आदमी लोग सब कोई कुछ कोई नहीं के खुशी रहेला मिलियनेयर बने की करोड़पति बने की बोले था तोर में से कितना कोई बा सब कोई खुशी रहेला मिलियनेयर बने की काज निकाहे से करेलन सर पैसा चाहेला तो पैसा रही तो आलीशान घर बनेबा बंगला गाड़ी विला रही तोहर नौकर चाकर रही सब कोई तोहर आगे पीछे घूमी सब कोई पैसा खुशी रहेला और अब थोड़ा बताओ अब जो हमने की है जो करेला है जो कि मौगोज बोला सर एक कितना लाभांतास बा कितना

कर लाबा खाई के ता करेला जुन हा एगो तीखा सब्जी हा पर आयुर्वेद में कर प्रयोग होला और करेला खाई खैबत तो हर शुगर कंट्रोल में रही यानी कि तो हर डायबिटीज तो हर कंट्रोल में रही और पाचन शक्ति मजबूत करेला तो डाइजेशन सिस्टम के हेल्प करेला वजन कम करेला करेला खैबत थोड़ा पतला हो जाएगा शरीर के डिटॉक्स करेला करेला त्वचा खातिर अच्छा है लापो खातिर अच्छा सुंदर लापो होला और इम्यून सिस्टम के बढ़ावेला एक में विटामिन सी भी बा और ऑक्सीजन भी बा जो शरीर के हर रोग से बचावेला ढेर सारा लाभ बा करेला खेला से जैसे तरह बोली कि करेला जो है तो हर ब्लड में जो शुगर है वो तो डायबिटीज के कंट्रोल में रखेला तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला पर एक बात याद रखे ढेर करेला खाई बता पेट में सकेला दर्द या कमजोरी हो तो करेला चला जीस खाई की अब करेला ढेर प्रकार से पकेला करेला की सूखी सब्जी करेला भुंजल जाला करेला भुंजल जाला करेला तारल जाला करेला के सरसों में पकाएला सा करेला के भुजिया हयो बनेला करेले का जूस करेला के जी यू बनेला ये तीखा रहेला पर पीबते डायबिटीज खातिर अच्छा करेला के आचार जासो मोगोज लेका लोग नहीं खाला ढेर बड़ा आदमी लोग नहीं खाला पर थोड़ा सन खाई जासो मोगोज अच्छा है और करेला के करी बनेला ग्रेवी सब्जी करेला के चिप्स भारत में जेबा तो करेला के पतला पतला कैसे मैं आलू के चिप्स बनाएला सर तो वहाँ करेला के चिप्स बनेला एकदम खोखों रहेला मतलब मुँह में पानी भर हम जाएला था सुन करेला वाला खा के आए खा के मन बा करेला के चिप्स बनाए की तो हम जाएला था सुन एमबीसी के इलाकों चीनवा में जाएला थोड़ा सुन करेला के चिप्स बना के खाएला तब रिधु सुन मार ताली मार ताली मार हमार संगे मार ताली मार ताली मार हमार संगे कुनाल हिलाल की तो गेले वन है गीत स्वीटी और स्वीनी खातिर और जितना हमार स्टूडेंट्स लोग बा जितना कॉलेज में आके पढ़े ले आए सुखदीप सिंह एल एस एस एस फॉरेस्ट साइड बॉयज एस एस एस इमानुएल लॉन्गचिल एस एस एस बुट्टू कुमार संगली एस एस जितना हमार जिले लोग आज बड़ा आदमी बन लग बा हमने के हाथ में पढ़ के बड़ा आदमी लोग तो बड़ा आदमी बना लो वैसा गीत तो लोग के नाम मार ताली मार ताली मार हमर संग मार ताली मार हमर संग खासम खास गीत आशा बेनी खातिर जो काम कर रहे इमानुएल लॉन्गचिल एसएसएस कॉलेज में आशा बेनी मार ताली मार हमर संगी

मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार बड़ी मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार ताली मार ताली मार हमर संगे ताली मारा हो कमर वा डोलावा नाचे गावा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ एमबीसी रेडियो तलो के नंबर वन रेडियो स्टेशन

सभी दोस्त बनते हैं यहाँ पर, दोस्त के साथ नाचते हैं, खाते हैं पीते हैं, मार ताली मार

मार ताली मार ताली मार हमार संगे और थपड़ी बजाए के एगो एक्सरसाइज है थपड़ी जब बजेबा तब तो हाथ के जितना लावेन बा जितना मसल बा सब लौगे रहेला हाँ और बेशक और 15 मिनट में प्रोग्राम समाप्त हो जाए पर अभी तो है तो लोग के संगे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और यहाँ मुका में भी बड़ी ठंडा कर रहता है बुझा था 16 डिग्री या 14 डिग्री कर रहता है इतना ठंडा करता तो कर ठंडा के मौसम बना तो का कर बस सौसा मोहताई बनी तो उड़िया जाती सर पीटर बोफ माउंटेन सर मौका माउंटेन रेंज ईवीएस कर ले हुआ ना अब सर हम बात करब सर एक वफादार जानवर के बारे में तो ये दुनिया के सबसे वफादार जानवर एक नाम है कुत्ता कुत्ता इंसान से गहरा जुड़ाव रखेला और हजारों साल से इंसान के साथ देते आल और आज भी साथ देवेला और वो परिवार के एगो सदस्य देखाओ के मानीला सर तो ओकर में सुरक्षा करने की प्रवृत्ति बा कुत्तापन मालिक के पन कुत्तापन मालिक और घर की रक्षा करेला खतरा जब महसूस करेला तो उ भौंक के चेतावनी देवेला कि कोई आवा था और कुत्ता इंसान के खुशी गुस्सा और दुख समझेला ऊपर मालिक के जब ओकर मालिक उदास होला तो कुत्ता ओकर भीड़ी पास बैठ के ओके ताकेला और कुत्ता जो है आसानी से परीक्षित हो सकेला पुलिस सेना और बचाव कार्यों में भी कुत्ता के प्रयोग होला और ढेर मना कुत्ता बा जैसे कि लाब्राडोर रिट्रीवर जर्मन शेफर्ड शेफर्ड जर्मन शेफर्ड लाब्राडोर रिट्रीवर हस्की पोमेरियन और इंडियन पारिया और कुत्ता वफादारी के उदाहरण है और ऊपर मालिक खातिर उसकी अपन जान दे दे इतना वफादार है कुत्ता और कुत्ता सिर्फ एगो पालतू जानवर नहीं है बल्कि एगो सच्चा साथी और वफादार मित्र भी है जो अपन इंसान के साथ देवेला अंत समय तक तो कुत्ता के एगो रोटी देबा उस जिंदगी भर थोड़ा याद करी इंसान के एगो रोटी देबा थोड़ा दू दिन में भुला दे तो कौन जस्ती वफादार बा इंसान या कुत्ता जरा चिंतन मनन करिया सोचर हमने की बताइया अगला गीत जिले जिले जिले प्यार से जिले खुशी से जिले में डोहू की आवाज में आगे चलावते ही सर जितना कोई अपन कुत्ता के अपन जानवर के प्यार करे ना कुत्ता जो है जीवन भर अपन मालिक से प्यार कर रहा है कुत्ता के जीवन ढेर नहीं रहा है वो सैक अजीजों 5 या 10 साल जी रहा पर जब तक

Agito virapen khatir aya khatir bhai rusal भाई रुसाल खातिर साथ में गुरुजी गंगू है गीत हो रो खातिर और भाई ईदू के नाम

संगतिया लोग बोई रहा सा कि जो मनुष्य शरीर है वो मशीन नहीं है वो होबो नहीं है तो ये दिन के काम करेगा पर के चेहरा थोड़ा सा आराम भी और आराम करे के हमने के हिंदू धर्म ग्रंथ में बोल जरा निद्रा देवी तो निद्रा देवी की है भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक मान्यता ये है कि नींद की देवी है निद्रा देवी तो जे कोई के नींद नहीं लगेगा वो लोग के चेहरा निद्रा देवी की पूजा करके यूट्यूब पर जेब त ढेर मारा मंत्र बा है मंत्र बा बोल बा त तोरा नींद चलाई त निद्रा के अर्थ है नींद और विश्राम या चेतना या शांत करके और देवी के अर्थ है शक्ति या दिव्य ऊर्जा इस प्रकार से ये दिव्य शक्ति जो है इस सब को के आराम पहुँचावेला वो चाहे इंसान हो वो चाहे जानवर हो जंतु हो या प्लांट होई तो रात के प्लांट वो लोग सुते रहे जैसे हमने सुची रहा सर और हिंदू ग्रंथ में नींद के केवल नींद जो है हमने की शरीर के थकान के दूर करेगा दिन भर पाची कोई बार रात के आराम करबा तो अच्छा से थोड़ा नींद लगी तो एगो कथा जुड़ल बा भगवान विष्णु जब योग निद्रा में रहल तब संसार संतुलन बनल रहल तो ये अवस्था के योग निद्रा बोलल जला और ये भी मानल जला कि दुर्गा जो शक्ति के रूप है वो भी हमने के विश्राम पहुँचावेला दुर्गा माँ और योग और आध्यात्मिक दृष्टि से देखबा बोलल जला नींद शरीर और मन के पुनर्जीवित करेला ई चेतना के संतुलित करेला और गहरी नींद जो है हमने के सुषुप्ति अवस्था में ले जाला निद्रा देवी के संतुलन निद्रा देवी हमने के शरीर के संतुलन में आने ला निद्रा देवी का प्रतीक ई है कि जीवन नींद जीवन के लिए आवश्यक है बिना विश्राम के शरीर कमजोर हो जाला मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है ई खातिर निद्रा देवी के पूजा चाहला करे के तो यूट्यूब पर जाइए और देखिए कितना मंत्र बा ये निद्रा देवी के पूजा कर बधेर कोई की प्रॉब्लम हो रहा रात की नींद नहीं लगेगा कोई डिप्रेशन में रहेगा स्ट्रेस में रहेगा तो खातिर लोग की नींद नहीं लगेगा तो जाइए यूट्यूब पर टापी करिए मंत्रास टू चांट टू गेट स्लीप बाय निद्रा देवी to obtain Nidra Devi's blessings. So, dig by YouTube mein kitna mana mantra ba. Dhe mana mantra ba hai. Aur Nidra Devi jun ha. Okar mantra dhe mana ba YouTube par sakba jake dekhe. Ta hi mantra ba jab bol ba ta dig ba thora aaram se nindai. ओम शांति शांति शांति ये मंत्र है और ओम नमो नारायण हयु मंत्र सवजा ओम हिं शांति हिं नमः त हय मंत्र वा 20 बार बोल पर रात के त थोड़ा अच्छा नींद आई हमेशा याद रखिए ओम शांति शांति शांति या फिर हय मंत्र बोलिए ओम हिं शांति हिं नमः और जब हय मंत्र वा बोल बा त तू देख बा धीरे धीरे थोर पल जिन पलकें हैं वो धीरे धीरे बंद हो ले जाए और थोड़ा अच्छा नींद लगी अगर अच्छा नींद लगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा

संगत्या लोग हई गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम ये पुलिस समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से हबीरियम के साथ दिलराजा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 11 बजे सुन बजा अगला प्रोग्राम सुनने पर और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने।

हमने कितने लोगों की मुलाकात हो अब बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी चरका प्रोग्राम में एक बार फिर सब माँ लोग के हैप्पी मदर्स डे सब पापा लोग के हैप्पी फादर्स डे हमने कितने लोग की मुलाकात यहाँ नहीं रहा मन तक रहता है इसे ही तो लोग खातिर गीत बज जाते रह के पर चहला प्रोग्राम समाप्त करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत कर ला हमने के प्रोग्राम सुन ला हमने के गीत सुन ला बहुत धन्यवाद और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दा अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सब कोई के प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू ऑल नमस्ते

0: 18 and 19 kilos. This is Radio Mauritius.
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ निशा फिर से आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, पुराने गीतों का जादू ही कुछ और होता है, एक पल में दिल को सालों पुरानी यादों तक ले जाता है। स्वागत है आप सभी लोगों का इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम।

हर रात को एक खूबसूरत गाना चाहिए और वो गाना है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन गाने, तो स्टे ट्यून तो सुनहरे पर एंड लेट द मेमोरीज सिंग अलोंग। बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं कि आपका दिल भी गाए हमारे साथ। बिल्कुल जी, इन योर सुनहरे पर ऐसे ऐसे गीतों को हम चुन चुन कर लेकर आते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि हम आपका दिल खुश कर सकें और आपकी यादों को भी दोबारा से ताज़ा कर सकें।

म्यूजिक लवर्स के लिए रात का सबसे प्यारा साथी होता है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गीत में है प्यार, हर गीत में है सुकून और हर गीत में है आपकी यादों की मिठास। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए आप और अगला नगमा को आप दिल से महसूस कीजिए।

वक्त जो है बदल जाता है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं। आइए उन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ बिताते हैं एक यादों भरी रात, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में। मैं हूँ निशा, जो आपका साथ निभा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हर एक गाने

हर रात कुछ यादें लेकर आती हैं और हर याद का अपना एक गीत होता है। इसी एहसास के साथ सुनहरे पर ऑन रेडियो मॉरिशस पर हम लेकर आए हैं गिने चुने नगमे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां बजेंगे बॉलीवुड के पुराने गाने, वो एवरग्रीन गाने जो दिल को आज भी उतनी ही मोहब्बत से छू जाते हैं। तो चलिए जी, ये अगला गाना खासकर हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो बड़े शिद्दत से गिनिशा का साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

वेल मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, रात जो है धीरे धीरे और हसीन हो रही है और साथ में बज रहे हैं पुराने बॉलीवुड के दिल छू लेने वाले नगमे। यही है आपका सुनहरे पल का मैजिक, म्यूजिकल मैजिक बोलते हैं इसको। तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त हु आर वर्किंग राइट नाउ, कुराज टू यू। अगर आप घर पे हो, आराम फरमा रहे हो, पूरा दिन काम करके आप थक गए हो, तो चलिए आपकी इस थकान को हम दूर भगाएंगे इस नगमे के साथ। ये रहा आपके नाम।

सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। ये है एक ऐसा सफर जो बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और हम आपके दिल को बस सुकून और राहत देकर ही जाते हैं। इस एक घंटे की सफर में उम्मीद करते हैं कि हमने आपके कोई सा भी एक मनपसंद गाने को चलाया है, और वो आपके नाम हमने ज़रूर डेडिकेट किया होगा, क्योंकि जितने भी गानों को हम लेकर आते हैं बड़े खास टाइम लगाकर चुन चुन कर लेकर आते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आप बड़े प्यार से शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हो।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। उम्मीद करते हैं कि आपने सुनहरे पल के इस खूबसूरत से शो को दिल से एंजॉय किया है। अभी के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे, मिलेंगे फिर से एक बार एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, मां बाप भाई यहां तक कि।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
1: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
2: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you।